भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। किसी से क्या कहें, किसी से क्या सुने, अब गुबार हो गए हम ही, हवा की जद में थे हम ही शिकार हो गए। हमें तो एक उम्र से पड़ी थी अपनी जान की, अभी जो साहिलों पे थे कहां से पार हो गए। हम ही हवा की जद में थे हमें शिकार हो गए।

भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। नाकाम है असर से दुआएं दुआ से हम, मजबूर हैं कि लड़ नहीं सकते खुदा से हम। चाहोगे तुम ना हमको ना छूटोगे हम से तुम, मजबूर तुम जफा से हुए हो वफा से हम। तुमसे बिगाड़ इश्क में होना अजब नहीं, तुमसे बिगाड़ इश्क में होना अजब नहीं। अंजाम जानते थे।

और चलिए भोर सुहानी में चलते चलते आपको सुनवाने जा रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत, और इसी के साथ आप सुरभि को दीजिए इजाज़त।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा

0: का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का दो दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। दो दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots-level engagement in their countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Sevatirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. He encouraged them to combine India's civilizational strengths with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global management. The Prime Minister called upon the officer trainees to serve as catalytic agents for India's economic engagement with the world. He also emphasized the importance of strengthening the digital presence of Indian missions. He said that a website is often the first gateway through which people interact with an institution and called for greater use of technology to make the delivery of consular and other services more seamless, responsive and citizen-centric. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization, Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme, expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial in absentia provisions, and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating UAPA cases. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary ERS, Mayank Singh.

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल की यस यस यस दिल की गहराइयों से। मैं आपकी धड़कनों पर जीती आरजी प्रीति आज स्टूडियो में अकेली नहीं हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी सस्पेंस कैसे क्लियर हो सकता है। सबसे पहले तो ज्ञानचंद जी का ज्ञान देखिए। एक बार ना श्रीमती ज्ञानचंद जी ने ज्ञानचंद जी से पूछा कि शादी और 11:59 में, यानी कि शादी मैरिज और 11:59 में क्या सिमिलैरिटी है। अब आप भी मुझे बताइए।

नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, अपने बड़े से अब जी हाँ अपने छोटे से दिमाग को बड़ा सा टेंशन मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि दोनों के बाद में ही, शादी के बाद में और 11:59 के बाद में, दोनों के बाद में ही 12 बजते हैं। समझ में आया? तो चलिए, ये ज्ञानचंद जी का सो कॉल्ड ज्ञान तो ठीक रहा, लेकिन लेकिन लेकिन यदि आप भी अपने रूटीन को बदल कर कुछ हल्का फुल्का और एनर्जेटिक करना चाहते हैं, यानी कि आपकी 12 ना बजे बल्कि आपकी पूरी दिन की एनर्जी वैसे ही बनी रहे, तो आप जुड़े रहिएगा FM रेनबो 101.9 के साथ और मेरे साथ। यस यस यस, आप हैं, मैं हूं और भी एक स्पेशल पर्सनालिटी है। अब आप थोड़ा सा कयास लगाइएगा कि कौन मेरे साथ हो सकता है। तब तक ना ना ना ना ना भाई, हम बेफिक्रे होकर तो आगे बढ़ेंगे ही अपने फन एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में। और पी का पी यानी कि प्रीति का पिटारा, आज केवल प्रीति का पिटारा नहीं है और साथ में किसका पिटारा है वो मैं बताऊंगी। यस, इस दिल को बेफिक्रे थोड़ा सा उड़ने देने के बाद में। स्टे ट्यून्ड।

0: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब जहां आज जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं अकेली नहीं हूं उसकी एक छोटी सी हिंट देती हूं, आपने अब तक कयास लगा लिए होंगे पर फिर भी चलिए, सुरभि की खुशबू, प्रीति की प्रीत, हंसी के साथ, म्यूजिक की बीट, गानों की धुन, बातों के रंग, FM Rainbow 101.9 के संग। जी हाँ दोस्तों, कुछ अंदाजा लगाया? अभी भी नहीं? अरे यार, ज्ञानचंद जी ने इतना ज्ञान बांटा लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं भैया। हाँ, मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं आप अपने छोटे से दिमाग को बड़ा सा टेंशन देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं जानती हूँ, यस, मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति जो हूँ। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में है यस आरजे सुरभि जैन। हेलो सुरभि जी।
1: नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप?
0: भाई श्रोता, तो आपकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्यों?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं, सबसे मिलना हो पा रहा है, तो आज शो नहीं पूरा डांस एंड मस्ती एंड रॉक एंड म्यूजिक।
0: क्या बात है, तो चलिए भाई, मैं समझती हूँ कि इससे पहले एक बार ज्ञानचंद जी का ज्ञान आवश्यक है। सुरभि जी, क्या कहते हैं आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो भाई एक दिन ना ज्ञानचंद जी ने श्रीमती ज्ञानचंद जी से कहा कि श्रीमती जी ऐसी चाय बनाओ कि पीकर ना तन मन एनर्जी से झूम उठे। तो इस पर ना श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि ज्ञानचंद जी, अपने घर में गाय का दूध आता है, नागिन का नहीं। भाई साथियों, दूध तो सबके घर में गाय या भैंस का ही आता है, पर कुछ लोग ना दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं तो कुछ लोग ना बिल्कुल निढाल से हो जाते हैं। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? वैसे ठीक है, आप ये चाहते हैं कि आप दिन भर एनर्जेटिक रहें, तो आपको ये अगर जानना है कि सबसे पहले खाली पेट क्या खाना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ और पूरे दिन एनर्जेटिक रहें, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताज़े फल बहुत हितकारी माने गए हैं क्योंकि इससे शरीर को भरपूर प्राकृतिक शुगर मिलती है और जो हमें दिन भर ऊर्जान्वित रखते हैं। और विशेषतः केला, सेब, तरबूज, नाशपाती, अमरूद, कीवी तथा अनार भी लाभदायक है, क्यों? क्या कहना है सुरभि जी आपका?
1: बिल्कुल सही बोला प्रीति जी आपने। और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँ
0: जी
1: कि एनर्जेटिक रहने के अलावा यदि आप मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ कर पीना भी एक अच्छा ऑप्शन है।
0: क्या बात है, ओके।
1: वहीं पर यदि आप शरीर और दिमाग की मजबूती चाहते हैं तो भीगे हुए बादाम और अखरोट भी एक बढ़िया ऑप्शन है। यदि आप दिन भर एनर्जेटिक रहना चाहते हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ाना चाहते हैं तो निराहार पेट, मतलब खाली पेट होना चाहिए आपका।
0: okay.
1: और खाली पेट आपको आंवले का जूस लेना है, एलोवेरा का जूस भी लेना है, क्योंकि जनरली डॉक्टर और जो एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इसकी सलाह देते हैं। तो एक बात और, क्या आप जानते हैं कि ये जूस आपके स्वास्थ्य के साथ साथ सुंदरता का भी ख्याल

0: ख्याल रखता
1: क्या
0: है
1: बात है, सच
0: जी।
1: में। इसका मतलब कि इसके तो इसके लिए तो फिर मुझे सबसे पहले ये जूस लेना पड़ेगा।
0: अरे नहीं प्रीति जी, आप तो वैसे ही पहले से बहुत सुंदर है, जैसे आपकी आवाज है वैसे ही आपका चेहरा है। तो ये बताना चाहती हूँ, यदि जो हेल्दी रहना चाहते हैं, हेल्दी स्किन चाहते हैं, और आपके जो बाल हैं वो भी सिल्की हैं, लंबे हैं, तो बस ये दोनों जूस आप लीजिए, इसको अपनी रूटीन में फॉलो कीजिए। नाउ देन उसमें चेंज देखिए आपके चेहरे पर और बालों पर।
1: आपने इतनी सारी जो बातें बताई ना, खासकर जो लास्ट वाली बात थी ना कि चेहरे की सुंदरता, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये लेना चालू करेंगे ना तो भाई बहुत कुछ इसमें चेंजेस आ सकते हैं। ये आपने सही बताया, लेकिन लेकिन लेकिन अरे भाई कितने लेकिन, ये ऐसे आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप इतने सुंदर हो जाएंगे तो हर जगह आपकी ही फोटो के चर्चे रहेंगे। क्यों, क्या लगता है आपको?

0: 107.9 Musically yours.
1: अरे क्या प्रीति, तुम भी गाने में खो गई क्या या किसी सोच में पड़ गई?
2: सुरभि जी, इस गीत के पहले जो आपने कहा ना कि गुनगुने पानी में नींबू पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि कल से 4-5 नींबू का रस ले ही लूँ ताकि मेरा मेटाबॉलिज्म ना थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट हो जाए।
1: अरे रे, ये गलती मत कर देना वरना मुझे आकर तुम बहुत सारी बातें सुनाओगी।
2: क्यों भाई?
1: अरे क्योंकि देखो, एक साथ यदि आप नींबू पानी मतलब गर्म पानी आपने बहुत ज़्यादा किया और उसमें 4-5 नींबू डाल लिए और उसको पी लिया, तो प्रीति जी आप नींबू पानी पीने के साथ साथ कुछ परेशानियाँ भी अपने साथ ले लेंगी। क्योंकि ये बहुत गर्म पानी यानी उबलते हुए पानी में जब ढेर सारा नींबू निचोड़ कर पीने से लाभ तो नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होगा। नींबू पानी का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए एक ग्लास बिल्कुल हल्के से गुनगुने पानी में सिर्फ आधा नींबू। कितना नींबू प्रीति जी?
2: आधा नींबू
1: जी। ध्यान रखना, 4-5 नींबू का तो बिल्कुल भी मत सोचना। तो आधा नींबू निचोड़ें और इसमें लगभग आधा टीस्पून शहद मिलाकर पिएं।
2: सिर्फ आधा टीस्पून?
1: जी हाँ, ज़्यादा मीठा भी नहीं पीना और ज़्यादा शहद भी नहीं मिलाना है। जी, तो सुबह सुबह बिल्कुल जब आपका खाली पेट रहता है, जिसे निराहार पेट भी कहते हैं हम, उसको नींबू पानी को खाली पेट ही आपको पीना है। नींबू में विटामिन सी होने के कारण इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा, आपका वजन भी घटेगा और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे।
2: तो भाई जब दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे ही तो फिर दिन भर नाचने का मन तो करेगा क्या साथियों? तो चलिए।

0: FM Rainbow 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। और आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ मैंने बताया ना, आज हमारे साथ आरजे सुलभी जी है, जो बहुत सारे इनफैक्ट

0: ढेर सारी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, और भी अगर आप सुनना चाहते हैं। अरे सुरभि जी, मैं यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, और क्या हुआ आपको?
1: क्या बताऊं प्रीति जी, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।
0: क्या, ऐसे क्यों?
1: अरे कल रात ना एक फंक्शन में गई मैं, फंक्शन में गई और वहाँ खाने के लिए वही अपना जो बफर सिस्टम रहता है उसमें ही खाना होता है जनरली आजकल। तो यहाँ से कुछ उठाया, वहाँ से कुछ उठाया, खाने का तो सुकून नहीं मिला, लेकिन बस वही पैरों में दर्द जरूर हो गया।
0: ऐसे लग रहा था कि खाने की तलाश में वॉक कर रहे हैं ना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: बात तो आपकी एकदम सही है सुरभि जी, पर इस संदर्भ में मुझे ये लगता है कि हमारे पूर्वज ना सच में बड़े समझदार थे, और हम थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ना थोड़े ओवर स्मार्ट से हो गए हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पुराना ट्रेडिशन जो हमने छोड़ दिया है तो नई वाली चीज़ें तो भूल दे, मतलब नई चीज़ें इंक्लूड करते जा रहे हैं, और पुराना जिसमें अपने को कुछ ज्ञान भी था, अपना हेल्थ का भी कुछ बेनिफिट था, उसको अपन इग्नोर करते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज हम ना प्लास्टिक से परेशान हैं। प्लास्टिक कम करो, प्लास्टिक हटाओ, डिस्पोजेबल का इस्तेमाल मत करो। इसके अलावा ना बुफे के खाने में प्लेट भी इतनी भारी होती हैं कि लगता है मानो खाना खिलाने वाला ना पहले पूरी कसरत करवाएगा और फिर ही खाना खिलाएगा। वही हमारे पूर्वज, अरे भाई बहुत सिंपल सा काम, पत्ता तोड़ो, पत्तल बनाओ, खाना खाओ और काम खत्म।
1: वो बैठ के खाना खाना बड़ा ही सुकून देता था। तो ये खाना जब पत्तल में बैठ के खाना, मतलब बैठ के खा रहे हैं पहली बात, और वो हैवी प्लेट्स का लोड भी घट गया। पत्तल के लिए ना बिजली चाहिए, ना फैक्ट्री का बड़ा झंझट, और ना खाना खाने के बाद प्लेट धोने का टेंशन। और पत्तल वो तो खाना खाकर चुपचाप विदा हो जाता है, कैसा है? सही है ना प्रीति जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बात तो
1: और वो
0: गौर
1: भी
0: करने
1: कहाँ
0: वाली
1: जाता है,
0: है।
1: वो विदा होने के लिए प्रकृति के पास ही पहुंच जाता है,
0: बिल्कुल, जहां से
1: मतलब
0: आया वहीं पर।
1: वहीं चला गया। वेस्ट वाला ऑप्शन है ही नहीं कि अपने को खाने के बाद कहाँ वेस्ट करना है, तो प्रकृति के पास वापस चला गया। और हम तो बात करने वाली, मतलब बात करने वाली, गौर करने वाली बात ये है कि खाना तो चल रहा है, सूखी रूट की रोटी भी खा
0: भाई
1: लें,
0: अब
1: लेकिन
0: आप ना मुझे खाने की याद दिलाई रहे हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, और मैं तो भाई आपको भी यही कहूंगी कि सिंपल सिंपल दाल रोटी खाओ।
2: ये समझो और समझा।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: और साथ ही आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। अरे इतना प्यारा गीत सुनने पर भी आप किस चिंतन में पड़ गए सुरभि जी?
2: अरे आपने जो ये पत्तल वाली बात बताई ना उसी के बारे में सोच रही हूँ।
1: पर क्या सोच रहे हैं ये भी तो बताइए।
2: जब हमारे यहाँ पत्तल में भोजन परोसा जाता था ना तो और बैठकर भी खाते थे।
1: बिल्कुल।
2: तो आजकल ये जो घूम घूम कर प्लेट में खाने का चलन है ना, तो आधे समय तो यही ढूंढते रहती हूँ मैं कि सब्जी कहाँ है, कोई स्पेशल आइटम कहाँ है, मतलब ढूंढ ढूंढ के ही खाने को मिलता है। मतलब और पत्तल में क्या होता है कि आप बैठ गए, सारे आइटम आपको आपके पास ही सर्व किए जाएंगे, तो सबसे बड़ा सुकून तो यही मिल जाता है कि ढूंढ के खाने का टेंशन खत्म। और जबकि मालूम प्रीति जी क्या है कि जब आप बैठकर भोजन करते हैं ना तो वो मतलब एक फीलिंग, वो एहसास ही अलग होता है।
1: बिल्कुल। और जब हम खड़े खड़े खाते हैं ना, अब मतलब जैसे आपने बताया कि हमने यहाँ से रोटी ली, वहाँ तक हम जाएंगे सब्जी लेंगे, रोटी ठंडी हो जाएंगी, फिर हम आगे जाएंगे चावल लेंगे, चावल ठंडे हो जाएंगे, ये तो बड़ी मतलब दिक्कत वाली बात है।
2: और कभी कभी तो क्यों में भी लगना पड़ता है जब एक

0: क्राउड आता है ना पीक आर्ट्स में, तो पता चली पेट में चूहे भाग रहे हैं और खाने को ही नहीं
1: और
0: मिल
1: हमें
0: रहा
1: उसको
0: है।
1: बोलना पड़ेगा दे दे भैया दे दे।
0: राइट राइट राइट। और अच्छा एक चीज़ और मैं हेल्थ के हिसाब से सोचती हूँ कि जब आप पत्तल में खाते हैं, बैठ के खाते हैं और सब कुछ आपको आपके पास मिल रहा है ना, तो भोजन उससे ना बहुत अच्छे से डाइजेस्टेबल हो जाता है, मतलब
1: बिल्कुल सुपाच्य।
0: डाइजेशन इतना अच्छा हो जाता है उसका कि आपको फिर ये जो मन में क्यूरियोसिटी रहती है, ये तो नहीं रह गया, वो तो नहीं रह गया, कुछ छूट तो नहीं रहा मेरा कोई आइटम, ये सब टेंशन फ्री होके आप बैठ के खाते हैं तो कहीं ना कहीं डाइजेशन पे तो इफेक्ट पड़ता ही है। और अच्छा मजेदार बात क्या है कि पत्तल सिर्फ परंपरा नहीं थी, पर्यावरण के लिहाज से भी समझदारी थी।
1: बिल्कुल
0: अलग अलग इलाकों में साल, पलाश, केले और दूसरे पेड़ पौधों के पत्तों से पत्तल और दोने बनाए जाते थे। और आज की बात करें तो आज जब प्लास्टिक के इस्तेमाल की बात करते हैं तो प्लास्टिक में खाने के बाद एक कचरा, पूरे समय कचरा भी इकट्ठा होता है। आप कहीं भी देखेंगे किसी भी फंक्शन के बाद,
1: बिल्कुल
0: यहाँ फंक्शन हुआ और फंक्शन हॉल के बाहर ही इतना सारा मतलब कचरा इकट्ठा हो जाता है। क्या बात, सही बोल रही हूँ ना प्रीति
1: बिल्कुल
0: जी?
1: बिल्कुल सही।
0: तो वही मैं सोचती हूँ, यदि पत्तल का ट्रेडिशन फिर से आ जाता है तो कितना ज्यादा जो आपका प्लास्टिक वेस्ट है सबसे पहले तो वो रिड्यूस हो जाएगा।
1: यानी कि पेड़ पौधे भी खुश, प्रकृति भी खुश और रोजगार भी खुश, है ना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जब सब खुशी खुशी की बात चल ही रही है तो क्यों ना हमारे लिजनर्स का पसंदीदा गीत सुनाकर उन्हें भी खुश कर दें, क्या कहते हैं आप।
0: जी बिल्कुल, तभी तो मजा आएगा इस शो में।
1: चले तो जब मजे लेने ही हैं तो यस साथियों, अगर आप अपना पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। और हमारे लिजनर्स जो हैं, रेडियो शौकीन जी ने मैसेज किया है एक गीत सुनना चाहते हैं, उसका सॉन्ग रिक्वेस्ट उन्दी मैडम चेप्पाला चेप्पंडी चेप्पंडी। रेडियो शौकीन सरवर जी आप भेज सकते हैं। और ये है जब बात भाई खुश होने की लग चल ही रही है तो भाई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सजना क्यों नहीं। यस आप ही में से, आप ही की फरमाइश आप ही के लिए।

0: ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు శ్రోతల కోసం సమర్పిస్తున్న ప్రత్యేక ధారావాహిక భారతరత్న.
1: लेकर आए हैं फंटरटेनमेंट एक्सप्रेस. और जैसे मैंने आपको कहा कि आज पी का पी नहीं है, आज एस का पी भी है, यानी कि प्रीति के पिटारे के साथ साथ सुरभि का पिटारा भी है ना? तो चलिए, इस पिटारे में बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत ज्ञानचंद जी के ज्ञान से. भाई, ज्ञानचंद जी का ज्ञान यदि ना हो ना तो मजा नहीं आता है ना. एक दिन ना श्रीमती ज्ञानचंद जी ने ज्ञानचंद जी से पूछा कि ज्ञानचंद जी, ये ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा, भाई बाकी के लोगों के लिए तो क्या होता है पता नहीं, पर मेरे लिए तो है एनी टाइम मुसीबत. साथियों, अब ये ज्ञानचंद जी के सो कॉल्ड डेफिनेशन, हाँ, जब उन्होंने एनी टाइम मुसीबत कहा तो उसके बाद में क्या हुआ होगा ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो ऑब्वियसली जोड़े ही जानते हैं, है ना. तो अब वो ठीक है, ज्ञानचंद जी के सो कॉल्ड डेफिनेशन की बात तो छोड़ दें, और सच में ATM का फुल फॉर्म क्या है?
2: ATM का फुल फॉर्म आपको नहीं पता क्या प्रीति जी?
1: क्या है बताइए.
2: फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन.
1: ऑटोमेटेड टेलर मशीन? काफी लोगों से मैंने एनी टाइम मनी भी सुना है.
2: अब ये तो जो भी जिसको बोलना है बोलते रहते हैं,
1: जैसे ज्ञानचंद जी ने कहा कि एनी टाइम मुसीबत है ना.
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो चलिए साथियों, एक बात समझ नहीं आती है कि ये ना ज्ञानचंद जी को समझ नहीं आती है कि ATM को कैसे पता चलता है कि हमारे जेब में भले ही पैसा ना हो पर हमारे अकाउंट में है ना. और हम यदि 3,500 रुपये मांगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन से नोट देने हैं? बात तो लॉजिक वाली है, क्यों सुरभि जी?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल. मतलब दिमाग है मशीन में लेकिन वो दिखता नहीं है.
1: दिमाग है जैसे बिल्कुल आप में और ज्ञानचंद जी में, है ना.
2: जी बिल्कुल.
1: हाँ, नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मुझ में है नहीं तो मैं ये क्लेम करती भी नहीं हूँ. हाँ जी, तो अभी ATM कैसे काम करता है ये तो आप बताएंगी, बट धीरे धीरे इतनी गड़बड़ क्या है भाई? गड़बड़ तो वैसे ATM के बारे में जानने की नहीं, पर ATM के भीतर से जो आता है ना उसके बारे में जानने की है मुझे. तो आप बताइएगा, लेकिन पहले मैं जरा अपने कानों को जो है पैसा पैसा पैसा सुना के सुकून तो दे दूं.

0: ರೈನ್ಬೋ 101.9
1: साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर अब बारी एक अहम जानकारी की।
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్స్ ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓలకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి ఇచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब, और
3: मैं हूँ आपकी आरजे सुरभि, और मेरे साथ हैं आरजे
1: प्रीति, आपके धड़कन पर जीती
3: आरजे प्रीति जी। प्रीति जी, जैसे अभी आपने ज्ञानचंद जी के बारे में बताया, एटीएम की मतलब फुल फॉर्म उनका बड़ी मजेदार फुल फॉर्म था ना,
1: एनी टाइम मुसीबत
3: जी।
1: लेकिन आपको पता है कि ये एनी टाइम मुसीबत का फुल फॉर्म देकर, यानी कि एटीएम का ये वाला फुल फॉर्म देकर ज्ञानचंद जी ने कौन सी मुसीबत मोल ले ली भाई ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तो जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं।
3: तो प्रीति जी, मैं सोच रही थी श्रीमती ज्ञानचंद जी के कुछ डाउट हैं एटीएम से रिलेटेड कि कैसे काम करता है ये, उसको मैं दूर कर देती हूँ तो वो भी समझ पाएंगी कि ये मुसीबत है कि सचमुच कुछ काम की चीज है।
1: क्या बात है, बताइए।
3: तो जैसे कि हम जानते हैं कि एटीएम में सब लोग कार्ड डालते हैं, तो जैसे ही कार्ड डालते हैं ना, तो कार्ड रीडर कार्ड की जानकारी पढ़ता है, इसके बाद ट्रांजेक्शन की जानकारी सुरक्षित तरीके से बैंकिंग नेटवर्क के जरिए संबंधित बैंक के सिस्टम तक पहुंच जाती है। फिर डालते हैं हम पिन, समझ गए ना, पिन कौन सा पिन, सेफ्टी पिन नहीं,
1: वो श्रीमती ज्ञानचंद जी वाला पिन है ना
3: नहीं तो वो उठाया और साड़ी का पिन डाल दिए
1: अच्छा मतलब आप भी ज्ञानचंद जी को बहुत अच्छे से जानती हैं सुरभि जी
3: जी जी, आपके साथ रहेंगे तो उनसे मिलना और उनका नेचर जानना जरूरी हो गया है।
1: ओके, तो पिन कौन सी पिन,
3: उसमें कुछ नंबर होते हैं, स्पेसिफिक नंबर होते हैं जिनको अपने को एंटर करना होता है। तो चार अंक डालते समय हमारा ध्यान इतना रहता है कि पीछे खड़ा आदमी कहीं देख ना ले
1: ऑब्वियसली
3: क्योंकि सब अभी जैसे आपने गाना बजाया ना, पैसा पैसा, कौन चाहता है कि मेरा पैसा कहीं चला जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो वही है कि आपको चार नंबर का वो पिन डालना है,

0: लेकिन एटीएम का ध्यान उससे कई चीजों पर रहता है। आपका तो सिर्फ आपको छुपाने पे रहता है, लेकिन एटीएम अपनी प्रोसेस करता रहता है।
1: अच्छा, कौन सी प्रोसेस?
0: वही आगे बताती हूँ मैं कि पिन का सुरक्षित तरीके से ऑथेंटिकेशन होता है और बैंकिंग सिस्टम यह देखता है कि ट्रांजेक्शन की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई भी हैकर जाके कोई भी पिन डाले और मतलब पैसे निकाले। नो नो नो, नॉट पॉसिबल। मतलब सारा कुछ जो भी हो रहा है वो सेफ्टी से ही होगा। इसमें खाते की स्थिति, उपलब्ध राशि, निकासी की सीमा, आवश्यक सुरक्षा जांच आदि शामिल हैं। तो यदि सब ठीक है तो बैंकिंग सिस्टम एटीएम को मैसेज भेजता है। बस यहीं से एटीएम के अंदर शुरू होता है असली खेल।
1: अच्छा, मतलब अब तक आप सिर्फ जो है लिंबू टिंबू खेल रहे थे।
0: जी जी असली खेल जो पैसों का खेल है। मजा तो उसी में ही आता है ना, पैसों के खेल में।
1: बिल्कुल।
0: तो मशीन के अंदर अलग अलग कैश कैसेट्स नोट रखे जाते हैं। एटीएम उपलब्ध नोटों और आपकी मांगी गई राशि के हिसाब से उनका कॉम्बिनेशन तैयार करता है। मान लीजिए प्रीति जी, आपने मांगे 3,500 रुपये। अब एटीएम अंदर ही अंदर हिसाब लगाता है मेरे पास कौन कौन से नोट हैं और इनसे रुपये मतलब 3,500 कैसे पूरे करूं। हाँ ना, अचरज वाली बात ना। मतलब सोचिए, एक मशीन है और वो पूरा आपका ट्रांजेक्शन सेफ्टी, मतलब 3,500 निकालना है तो वो पूरी प्रोसेस करके निकाल रहा है। मतलब एकदम सरप्राइजिंग है। इंसानों को करना इट्स सो इजी क्योंकि अपने पास तो दिमाग है ना, लेकिन मशीन का तो क्या है,
1: पूरा मशीन के पास तो ज्ञानचंद जी से भी ज्यादा दिमाग है।
0: जी जी जी कितने कम समय में ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है प्रीति जी, कि आप मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ आपने पिन डाला, आपने अपने मनी जो भी आपका अमाउंट है वो आपने एंटर किया और विद इन सेकंड वो अमाउंट बाहर भी आ जाता है।
1: अच्छा
0: जी, और आप जानते हैं कि हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, तो ये पैसे तो निकालना ही है, पैसे की चर्चा चलती रहेगी क्योंकि पैसे के बिना किसी की जिंदगी पूरी भी नहीं है आजकल।
1: बिल्कुल पूरी भी नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। और वैसे जैसे आपने कहा कि हम कोई भी जो है काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, तो भाई हमारे लिजनर्स की फरमाइश कैसे अधूरी छोड़ेंगे। तो साथ ही यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई गीत इसको डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232342 और मैसेज भेजा है रेडियो शो सर्वर जी ने और साथ ही फरदीन जी ने भी मैसेज भेजा है, एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं। तो चलिए उसी प्यारे से गीत की ओर पहुंचते हैं, स्टे ट्यून्ड। लेकिन लेकिन लेकिन साथियों, भाई पैसे, पैसे के पास कौन नहीं जाना चाहता। न्यूज के पास जाने से पहले एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए।
2: ब्रो ఆకలేస్తుంది, బిర్యానీ తిందామా?
3: ఏ ఇప్పుడు బిర్యానీ ఏం తింటాం, పద హలీం తిందాం.
2: తిందాంలే గాని హలీం అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా?
3: హలీం ఎక్కడి నుంచో రావడం ఏంటి, మన హైదరాబాదే కదా.
2: కాదు, హలీం ఒక పర్షియన్ డిష్ నుండి ఎన్నో మార్పులతో ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత పాపులర్ అయింది.
3: ఓ అవునా?
2: ఇంకా దాంట్లో చాలా న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి.
3: సరే కానీ అసలు ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు?
2: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
3: జష్నే హైదరాబాదా, అదేంటి కొత్తగా?
2: ఒక్క హలీమే కాదు, ఇలాంటి మరెన్నో డిషెస్ గురించి మనందరికి చెప్పడానికి వచ్చేసింది
4: జష్నే హైదరాబాద్
2: at 2 p.m. only on FM Rainbow 101.9.

0: FM Rainbow 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। आपके धड़कनों पर जीते आरजे प्रीति के साथ, और जैसे मैं आपको बताया कि आज मेरे साथ स्टूडियो में आरजे सुरभि जी भी है। अरे सुरभि जी, क्या हुआ, आप मायूस क्यों हो गए?
2: अरे एटीएम ने मेरा पैसा ले लिया प्रीति जी, क्या बताऊं, अब दे भी नहीं रहा है।
1: मतलब आप कैश निकालने गए तो एटीएम से खाली हाथ लौट आए, इसका मतलब इसका कारण यही है क्या
2: जी? मतलब दे ही नहीं रहे पैसा।
1: अरे अरे अरे अरे अरे, टेंशन ना लो सुरभि जी, टेंशन ना लो, बिकॉज मैं हूं ना नहीं, मैं आपको आपका पैसा नहीं देने वाली हूँ।
2: अरे मुझे लगा एक पल के लिए कि पैसा तो मुझे आपसे ही मिलने वाला है, मैं फ्री।
1: इसीलिए तो मैंने पहले ही बता दिया, मुझे पता है, क्योंकि मैं आपकी धड़कनों पर जीती हूँ, आरजे प्रीति हूँ। तो साथियों, वैसे मैंने आपको बताया ना सुरभि जी, आप भी टेंशन ना लो, यदि हम पैसे लेने में बहुत देर कर देना तो कुछ एटीएम सुरक्षा के लिए जो है कैश अंदर वापस खींच लेते हैं।
2: पर ये सब होता कैसे है प्रीति जी?
1: अरे जब हम एटीएम में कितना पैसा चाहिए ये बताते हैं ना, तो फिर मोटर्स और रोलर्स जो है वो नोटों को आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में सेंसर्स में कितना पैसा जो है, रास्ते में जो सेंसर्स होते हैं ना, उनकी मूवमेंट और थिकनेस जैसी चीज़ों पर, जो नोट की जो थिकनेस होती है उस पर नजर रखते हैं, और अगर डिस्पेंसिंग में कोई गड़बड़ी हो तो उससे मशीन डिटेक्ट कर सकती है। सारे नोट सही तरह से तैयार होने के बाद कैश स्लॉट खुलता है और हमें मिलते हैं, जैसे आपने बताया कि 3,500 रुपये, 3,500 की जो बात चल रही थी, तो आपके 3,500 आप तक पहुंच जाएंगे। तो साथियों, अगली बार एटीएम से पैसे निकालते समय याद रखिएगा, हम सिर्फ बाहर कार्ड डालते हैं और पिन दबाते हैं, लेकिन अंदर कार्ड से बैंक तक की पूरी पूरी बातचीत होती है, जैसे आज आपकी और हमारी और सुरभि जी की हो रही है। यस, यानी कि एटीएम सिर्फ पैसे उगलने वाली मशीन नहीं है जनाब, पहले बैंक से पूछता है पैसे दूं, बैंक कहता है हाँ, और फिर एटीएम कहता है लीजिए साहब आपका कैश। देखा आपने, दिखने में छोटी सी इस मशीन का मैकेनिज्म कितना बड़ा है, बिल्कुल हमारे सुरभि जी के दिमाग की तरह। इसलिए तो कब से आपके पसंदीदा गीत आप तक पहुंचा रही है, और अब कौन सा गीत सुना रही है सुरभि जी,
2: बताइए आपको कौन सा सुनना है?
1: हम तो उसी में राजी हैं जिसमें आपकी रजा है।
2: चलो तो दोनों की पसंद का एक सॉन्ग।
1: लेकिन जब पैसा मिलता है तो इंसान क्या करता है,
2: बंदर की तरह नाचता है।
1: तो चलिए नाचने देते हैं जिनको पैसा मिला, वैसे अपन को मिला नहीं है, लेकिन जिनको मिल रहा है उन्हें तो ये गीत बनता है
2: जी, मस्ती मजाक के।

0: मुरैना मध्य प्रदेश.
1: ओके, बट व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट बटेश्वर?
0: इट्स अ होम टू रिमार्केबल ग्रुप ऑफ एंशियंट टेम्पल्स ब्रॉडली डेटिंग फ्रॉम 18th to 11th centuries.
1: सो वी आर टॉकिंग अबाउट सीरियसली ओल्ड टेम्पल्स?
0: ऑब्वियसली. बट ओवर टाइम मोर देन 200 टेम्पल्स वर लाइंग इन अ बैडली डैमेज कंडीशन.
1: More than 200? That's not a restoration project. That's a giant historical jigsaw puzzle, I feel.
0: Exactly. And unlike a normal jigsaw puzzle, there was no picture on the box saying this stone goes here.
1: And also no instruction manual either?
0: No. The conservation team, conservation team had to carefully study the surviving remains and work out where the architectural pieces belong.
1: So basically, they had to make history fit together, one stone at one time, right?
0: Yes, that's the idea. And slowly, those broken pieces began revealing the temple hidden within the ruins.
1: Now that's impressive, because sometimes archaeology isn't about finding some new. It's about helping the old tell its story again.
0: Yes, even a pile of stones can have a punchline and a story.
1: Yes, punchline and a story. Yes, and story. When you tell me about story, na, then I also want to tell you some story. But before that, we will just move on towards messages. As Dr. Ashish Ji Chauhan messaged us. Yes, Dr. Ashish Ji Chauhan, जो हमारे साथ अक्सर बने हुए होते हैं, उन्होंने message किया है और एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं. मेरे साथ ही यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं, फिर कोई गीत किसी को dedicate करना चाहते हैं, तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं. हमारा WhatsApp नंबर है +91040232348222. एंड ये लीजिए डॉक्टर साहब, आप ही में से आप ही की फरमाइश आप ही के लिए. वैसे डॉक्टर साहब हर बार जो सलाह देते हैं ना, तो इस बार बहुत एक काम सलाह दे रहे हैं, सुनिएगा.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफ एम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपके अपने यस यस यस आपके अपने पसंदीदा गीत और अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब, जहां पर ज्ञानचंद जी इतना सारा ज्ञान बांटते हैं तो एक दिन ना श्रीमती जो है ज्ञानचंद जी है ना, उन्होंने पूछा कि वो कौन से पति होते हैं जो अपनी पत्नियों के इशारों पर नाचते हैं। तो मैंने पूछा, क्यों भाई, ज्ञानचंद जी नहीं नाचते क्या? तो इस पर श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि अरे कहां, वो तो मेरे इशारे छोड़कर कोई गीत पर भी नहीं नाचते हैं। भाई अब ये कहां तक सही है ये आप भी जानते हैं और ज्ञानचंद जी भी जानते हैं, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। खैर अब डांस करते हैं या नहीं वो आपको बताएं, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू डू लेट्स बले बले नाउ। Check out this funky sound.

समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने संसद में बार बार हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को सवाल पूछने, विरोध करने और मतदान करने का अधिकार देता है, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित करने का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि

0: अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी वीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। बिल ऑफ एंट्री वह घोषणा पत्र है जो आयातक विदेश से माल मंगाते समय सीमा शुल्क विभाग को देता है। इसमें माल की मात्रा, कीमत और उस पर लगने वाले कर की जानकारी होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अगस्त की शुरुआत में जारी नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों के तहत टैरिफ रेट कोटा योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of Unified Payment Interface. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling the countrymen to share their UPI experience, he stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. The United Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments and has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem. UPI, which was launched on the 25th of August 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The National Security Advisor and Special Representative on the India-China boundary question, Ajit Doval, today called on Vice President of the People's Republic of China, Han Cheng. In a social media post, the Embassy of India in Beijing said prior to the 25th round of the special representative's talks today, both sides discussed ways to strengthen peace and tranquility

0: ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: ಕಲಲು, ಸಾಹಿತ್ಯಂ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಂ, ಪ್ರಜಾಸೇವ, క్రీడలు ఇలా ఏ రంగంలోనైనా అపూర్వ అసాధారణమైన సేవలందించిన ప్రతిభామూర్తులకు భరతమాత అందించే అత్యున్నత పురస్కారం భారతరత్న. ఈ అద్వితీయ గౌరవం అందుకున్న మహనీయుల జీవన రేఖలని, ఆయా రంగాలలో వారు అందించిన విశిష్ట సేవలని వివరిస్తూ ఆకాశవాణి వివిధ భారతి ఎఫ్ఎం 102.8 మెగాహెడ్స్పై ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు శ్రోతల కోసం సమర్పిస్తున్న ప్రత్యేక ధారావాహిక భారతరత్న.
2: और दोस्तों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब. ऑस्ट्रेलिया की घड़ी में 12:44 हो चले हैं और जैसे कि अभी सुरभि जी ने पूछा कि यस हाउ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डिसाइडेड, सो लेट मी टेल यू सुरभि जी दैट इंडिया यूजेस 82° 30' ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज इट्स अ स्टैंडर्ड मेरिडियन.
3: ओके, सो एंड दिस लाइन पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, राइट?
2: Exactly. So, you could say Mirzapur is sitting on the imaginary line that helps set the standard time for the whole country.
3: Okay, and there is another interesting fact. IST is 5 hours and 30 minutes ahead of Coordinated Universal Time, or you can say UTC.
2: Okay, so now let's test our listeners. We know that 82° 30' East Standard Meridian passes through Uttar Pradesh. Can you name the other 4 Indian states through which it passes?
3: Let me think, Preeti ji. Okay, so it is Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and Andhra Pradesh.
2: Correct. So one imaginary line helps an entire country to stay on the same clock. So yes, our clock is telling it's 12:45:15 and we need to move towards messages also. To saathiyon messages ki aur badhte hain. Message bheja hai हरीश कुमार पुरानी बोयनपल्ली सिकंदराबाद से. शुभ दोपहर प्रीति जी. शुभ दोपहर आपको भी. और क्या बात है प्रीति जी, आज तेलुगु फुल फ्लो में. अरे भाई हरीश जी, जस्ट गो विद द फ्लो एंड एंजॉय. और मैसेज भेजा है हुदा जी ने बाबा नगर से. ओके, क्या कह रहे हैं हुदा जी, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआओं से बहुत अच्छे हैं हुदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और कहती हैं कि अगर 4 औरतें साथ बैठकर बातें करें तो चुगली. गौर फरमाइएगा दोस्तों, बात इन्होंने बड़ी काम की गई है. अगर 4 औरतें साथ बैठकर बातें करें तो चुगली, और 4 मर्द साथ बैठकर बातें करें तो मीटिंग. बहुत अच्छा. साथ ही कुछ पहले से की फरमाइश भी आई है, तो चलिए आप ही में से आप ही की फरमाइश आप ही के लिए. स्टे ट्यून्ड.

0: FM Rainbow 101.9
1: और दोस्तों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। और इसी नमस्ते हेलो आदाब में बहुत सारे मैसेजेस जैसे मैंने आपको बताया आके हैं, और एक मैसेज अभी इस गीत को सुनकर भेजा है शिवाजी ने घट के सर से, और कहते हैं कि हेलो प्रीति जी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी माई सोशल स्टडीज कॉन्सेप्ट्स आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सोशल स्टडीज में तो पास होते ही मैंने उसको लाइफ से रिटायर कर दिया था, क्या बात है। बट ये कॉन्सेप्ट मुझे अभी भी याद है क्योंकि इसमें एक लाइन का नाम है कैंसर, और कैंसर नाम सुनते ही कौन भूल सकता है। बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल सही। और ये नाम तो दिमाग में परमानेंटली सेव हो गया है, बहुत अच्छी बात, परमानेंटली सेव हो गया है। उस पर शायद थोड़ी सी धूल चढ़ गई थी जो हमने इस ज्योग्राफी से हटा दी है ना शिवाजी। और मैसेज भेजा है रेडियो शौकीन सरवर जी ने और फरदीन खान जी ने, फरदीन खान भी एक गीत की फरमाइश कर रहे हैं और रेडियो शौकीन सरवर जी भी। तो चलिए हम उन्हीं प्यारे से गीतों की ओर बढ़ते हैं, पर उस प्यारे से गीत की ओर बढ़ने से पहले एक विशेष जानकारी भी तो हमें आप तक पहुंचानी है, और बाकी शेष तो हम है ही।
2: హే నేహా, ఈ మధ్య నువ్వు చాలా రిలాక్స్ గా కనిపిస్తున్నావు. ఎల్ఐసి యొక్క బీమా లక్ష్మీ ప్లాన్ తీసుకున్నాను. చిన్న మొత్తాల పొదుపు పెద్ద రాబడిగా మారుతుంది. మనకి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కూడా ఉంటుంది. గ్యారంటీడ్ అడిషన్స్, 3 ఆకర్షణీయమైన ఆప్షన్స్ తో అడిషనల్ సర్వైవల్ బెనిఫిట్, ఇందులో ఆటో కవర్ కూడా ఉంది. ఈ ప్లాన్ ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసమే. ఎల్ఐసి హర్పల్ ఆప్కే సాత్.
0: FM Rainbow 101.9

0: FM Rainbow 101.9। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो FM Rainbow 101.9 में। और अभी हम पढ़ रहे थे मैसेज और इन मैसेज का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं। और हमारे एक लिसनर ने भेजी एक बहुत अच्छी शायरी, तो देखिए सुनते हैं एक शायरी। तेरी चौखट से सर उठाऊं तो बेवफा कहना, और तेरे अलावा किसी और को चाहूं तो बेवफा कहना। अगर कभी शक हो मोहब्बत पर तो रख देना हथेली पर जहर, ना खाऊं तो बेवफा कहना।
1: भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। और आगे भी कुछ लिखा है इन्होंने।
0: जी जी जी, एक मन को छू लेने वाली कविता हमारे लिए भेजी है। बीमार थे तो दरवाजा तक किसी ने नहीं खटखटाया, बीमार थे तो दरवाजा तक किसी ने नहीं खटखटाया, मौत की खबर क्या मिली, पूरा खानदान चला आया।
1: हो बिल्कुल बिल्कुल। और आगे,
0: जिंदगी भर तन्हा छोड़ दिया जिस बाप ने, जिंदगी भर तन्हा छोड़ दिया जिस बाप को सबने, आज उसकी जायदाद ने हर रिश्तेदार को अपना बनाया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात आपने कही है अशोक जी, वाकई में सही कहा है। और साथियों हम और भी ऐसे मैसेजेस शामिल करेंगे, पर फिलहाल यस यस यस इस बारी आ चली है आपके पसंदीदा आपके अपने शो यस यस यस यस लाइव फोन इन की। तो चलिए उसकी और आगे बढ़ने से पहले एक बार ज्ञानचंद जी का ज्ञान तो बनता है। तो एक बार ना श्री ज्ञानचंद जी ने ना श्रीमती ज्ञानचंद जी और श्री ज्ञानचंद जी में कुछ तो भी हो गया, तो श्रीमती जी ने कहा कि तुम हर बात पर ना हर बार मेरे मायके वालों को बीच में क्यों ले आते हो। तो इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा कि जब टीवी कोई खराब आती है ना तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है, गाली तो सब कंपनी वालों को ही देते हैं ना। और साथ ही अब इसके बाद में ज्ञानचंद जी के साथ क्या हुआ होगा ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, है ना, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। तो चलिए अब आप इंतजार कर रहे होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। तो मैं एक छोटा सा सवाल आप सबसे पूछना चाहते हूँ कि चैन से जीने के लिए हम सभी बेचैन क्यों हैं? गौर कीजिएगा, चैन से जीने के लिए हम सभी बेचैन क्यों हैं? तो इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देखते हैं कि कौन जुड़ रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। चलिए चलिए चलिए।

0: यस हेलो।
1: हेलो प्रीति जी, गुड
0: हाँ
1: आफ्टरनून मैडम।
0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: हाँ मैं रामू बात कर रहा हूँ।
0: रामू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छा है मैडम, आप कैसे हैं?
0: ऊपर वाले का उपकार है, आपकी शुभकामना। इससे ज्यादा और क्या चाहिए अच्छी जिंदगी के लिए, बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए।
1: हाँ हेलो हेलो, हाँ
0: हेलो रामू जी, बस बहुत बार हिल गए हम यहाँ से, और कितनी बार हिलाएंगे भाई।
1: तो आपको फोन करने के लिए फोन किया मैंने, बात
0: सॉरी।
1: करने के लिए, आपसे बात करने के लिए फोन किया मैंने।
0: ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रामू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। चलिए अपने जल्दी से अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
2: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति जी।
0: वेरी वेरी वेरी वेरी हैप्पी आफ्टरनून श्रीनिवास राव जी। जितने आपने वेरी बोले उससे एक ज्यादा वेरी।
2: बहुत ही अच्छा है। तो
0: धन्यवाद, बताइए।
2: उसके लिए क्या है, मुझे अपन जब पैदा हो गए तो कंपलसरी कुछ ना कुछ करना चाहिए ना।
0: तो चिंता करना चाहिए।
2: वो करने के लिए कुछ भी काम चाहिए थे।
0: अच्छा, कुछ तो भी काम
2: हाँ
0: चाहिए था इसलिए चिंता कर ली। क्या श्रीनिवास राव जी, हद हो गई यार।
2: नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्या है,
0: फिर कैसा
2: आप
0: है
2: आपका टॉपिक जो है उससे ज्यादा बात करने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि
0: ऐसा है क्या?
2: अपन
0: हाँ
2: आ गए, अपन जिंदगी में आ गए, आ गए तो फिर पैदा हो गए तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो
0: आप तो ना
2: बड़े बड़े
0: बिल्कुल
2: बड़े बड़े काम करते, अपन थोड़ा बहुत कुछ तो
0: छोटा
2: काम
0: सा काम कर
2: करेंगे।
0: ले रहे हैं ना। श्रीनिवास राव जी, आप ना उस गीत के जैसे बात कर रहे हैं। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन
2: और
0: है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, ऐसे बोल रहे हैं आप।
2: जिंदगी और
0: कहानी है।
2: कुछ
0: बहुत खूब श्रीनिवास राव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, इतनी श्रीनिवास राव जी जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ साझा की, यदि आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 2323003023, 2323484821, या फिर 2970475 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर इसी नम्र निवेदन के साथ कि साथियों आप अपनी बात संक्षेप में रखें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो,
1: हेलो प्रीति जी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं शिवा बात कर रहा हूँ, बच्चे
0: शिवाजी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: क्या
0: कॉन्सेप्ट टॉपिक ऑफ कैंसर याद है
1: कर
0: ना अभी भी?
1: रहे हो?
0: जी
1: याद है आपकी तरफ से वो भी।
0: जी, बताइएगा।
1: हाँ आज कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं
0: आज मैंने ये पूछा है
1: और
0: कि चैन से जीने के लिए सभी बेचैन क्यों हैं? हम सभी को पता है कि हम चैन से जीना चाहते हैं, पर उसके लिए भी हम बेचैन हैं।
1: सॉरी
0: चलो ओके, नो प्रॉब्लम। आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट वी ऑल वॉन्ट टू लिव पीसफुली, बट फॉर दैट ऑल्सो वी आर स्ट्रगलिंग अलॉट। बट वाइल फॉर लिविंग पीसफुली देर इज नो नीड टू स्ट्रगल एट ऑल, राइट?
1: डेफिनेटली। अभी देखो मैं तुरंत एग्जांपल देता हूँ।
0: जी
1: मैं अभी वर्क फ्रॉम होम करता हूँ तो हैबिट है एफएम सुनने के लिए। हाँ बिल्कुल, आपकी आपको याद, आपको कैसे भी पता ही होगा कि आप कोई भी आईटी एम्प्लॉय से कर जॉब करना, ऐसा देर विल बी डेफिनेटली स्ट्रेस इन एवरी डे। तो टू अवॉइड दैट आई यूजुअली लिसन रेडियो। तो सिमिलरली अदरवाइज द सेम टू पीपल। तो
0: ओके
1: पीएल या मैनेजर पीछे पड़ने से आप टेंशन या नाराज मत हो
0: हम्म,
1: जाओ, दिल पॉज हो जाओ, फोन नहीं तो रेडियो ऑन कर लो, सुनते जाओ, बस एंजॉय करते जाओ,
0: चलो हमें ये
1: ये
0: जान के
1: सब
0: अच्छा लगा कि हम आपके जो है टेंशन को कम करने का माध्यम बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं जो कि सुरभि जी बात करेंगी। देखते हैं कौन जुड़ रहा है हमारे साथ।
3: हेलो प्रीति जी।
0: हेलो हेलो हेलो रेनबो, मैं सुरभि बोल रही हूँ सर, बताइए कैसे हैं आप?
3: बागुना माँ चप्पू नु चप्पू बनो बागुना वगैरह।
0: जी, सर हिंदी में बात कीजिए ना।
3: हेलो
0: రమణయ్య గారు ప్రతిసారి ఇట్లానే చెప్తారు, అందరు బాగున్నారు మీ దయ వల్లనే, కొంచెం ఇప్పుడు ఈసారి మీరు చెప్పండి హిందీలో సుర్భిజీకి ఏం చెప్తారని?
3: ఏం చెప్పాలంట?

0: 101.9. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 विथ योर आरजे सुरभि एंड आरजे
1: प्रीति, आपके दर्शकों पर जीती आरजे प्रीति
0: जी। तो अभी चल रहा है हेलो रेनबो और हमारे साथ जुड़ रहे हैं
1: राजा रेड्डी साहब
0: जी। हेलो
2: जी,
0: जी सर
1: नमस्कार। नमस्कार राजा रेड्डी साहब, बताइए।
2: नमस्कार, हमारा चिंता है कि हमारा विचार है कि हमारा चिंता जी जो है प्रोग्राम में शामिल कीजिए।
1: आपके चिंता जो है वर्ल्ड टूर पे गए हैं राजा रेड्डी साहब,
2: जल्दी आने के लिए आप कार भिजाइए।
1: ओके ओके, जल्दी

0: आप।
1: जी जी
0: राजी
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजा रेड्डी साहब,
0: आगे का
1: जुड़ेंगे आपसे फिर से,
0: जानकारी रखिए आप।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों ये थे राजा रेड्डी साहब जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ साझा की, और जल्दी से बाबा अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें। हेलो रेनबो,
2: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार प्रभाकर रेड्डी साहब,
2: नमस्कार, कैसी है आप?
1: ऊपर वाले का उपकार है, आपकी शुभकामना है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताइए।
2: छोटी बात,
1: छोटी नहीं बड़ी बात कहिएगा प्रभाकर राव जी, आप बड़े हैं तो बड़ी बात कहिएगा।
2: छोटी बात से पूरा दुनिया बन गया है।
1: हेलो, लगता है प्रभाकर जी ने अपना कॉल बीच में ही कट कर दिया है, कोई बात नहीं, हम अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, स्टे ट्यून्ड। हेलो रेनबो, हेलो,
3: नमस्ते जी।
1: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: मंगा भास्कर, सिकंदर भास्कर,
1: सिकंदराबाद से मंगा भास्कर जी जुड़ी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद मंगा भास्कर जी जुड़ने के लिए, कैसी हैं आप?
3: फाइन, आप दोनों का आवाज सुनकर और ज्यादा हंस रहे हम।
1: आपने अपने दिल में इतनी जगह दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू।
3: ये प्रिय चीज है ना, आप नहीं होता ना हंसने के लिए,
1: जी जी जी
3: बच जाता है ना
1: जी, आप लोग के साथ जुड़ते हैं तो हंसी अपने आप आने लगती है। मंगा भास्कर जी कहते हैं ना, एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारह हो जाते हैं, उसी तरह।
3: मैंने आजकल ऑफर्स रहता है ना, एक करीब करीब 1+1 ऑफर।
1: जी जी नहीं तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे 1+1 2 नहीं हो रहे, यहाँ पे 1+1 11 हो जा रहे हैं।
3: किताब और आ देखो लाभ है अपन को, इसलिए सब लोग हैप्पी रहना चाहते, लेकिन इंटेंशन
1: इंटेंशन
3: लोगों की इच्छा ज्यादा हो गया, कंपैरिजन ज्यादा हो गया दूसरों पे।
1: बिल्कुल,
3: उनको ये है छोटा वेक, वो लोगों के पास बड़ा वेक, कंपैरिजन में
1: कंपैरिजन में ही हम जो है ये चिंता को अपने पार्ट कर, अपने लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बना ले रहे हैं।
3: उसीलिए सब चीज अपन को लॉस हो रहा,
1: बिल्कुल
3: भी छोटा कुछ भी लॉस हो रहा अपन।

0: जी, जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ साझा की। और अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो।
1: हेलो, हाय प्रीति जी, कैसे हैं आप?
2: हेलो हेलो हेलो रेनबो, कौन बोल रहे हैं?
1: हुदा बाबा नगर से।
2: अच्छा हाँ, हुदा जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, आपका नाम?
2: सुरभि जैन बोल रही हूँ
1: जी।
0: हुदा जी बताइएगा, स्वागत है आपका रेनबो एफएम। हेलो,
1: ना सुकून से दिन गुजर रहा, ना चैन से रात गुजरी, ना सुकून से दिन गुजरा, ना चैन से रात गुजरी, मैं खुद से भी बिछड़ गई, मैं खुद से भी बिछड़ गई जब उस शख्स से मुलाकात हुई।
2: अरे बहुत बढ़िया
3: बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात।
1: बस यही है सुकून, चैन, बेचैनी के वजह सब परफेक्ट चाहिए और जल्दी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, परफेक्ट चाहिए और जल्दी चाहिए, सबसे बड़ी बात आपने बताई है, बहुत अच्छी बात आपने साझा की हुदा जी। बाय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। और साथियों यहाँ पर हम एक प्यारे से मैसेज की ओर बढ़ना चाहेंगे। मैसेज भेजा है अश्विन जी ने फ्रॉम कोठी कुसाल मार्केट से। तो उन्होंने बढ़िया मैसेज भेजा है कि पत्नी पति के पीछे ही क्यों चलती है। तो जवाब में आता है कि पति पत्नी जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं जिसको संतुलित करने के लिए एक को आगे और एक को पीछे चलना पड़ता है। और बात रही पत्नियों के पीछे चलने की, तो भारतीय पत्नी को अपने आप पर गर्व होना चाहिए क्योंकि गाड़ी के पिछले पहिए पर ही अधिक भार होता है और भारतीय महिला उस भार को बड़ी सहजता से संभाल लेती है। बहुत बढ़िया भाई, वाह अश्विन जी भाई वाह, आज तो ऐसे लग रहा है कि आपने ये बात जो है नमिता जी के लिए कही है। बहुत खूब, मानना पड़ेगा। वैसे कुछ कुछ जो है ऐसे लग रहा है कि अश्विन जी ने नमिता जी के लिए यहीं से तारीफ कर दी है हमारे ज्ञानचंद जी की तरह। चलिए बहुत अच्छी बात आपने साझा किया अश्विन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आपका मैसेज पढ़कर। और साथियों यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें। हेलो रेनबो, हेलो रेनबो,
4: गुड आफ्टरनून मैडम,
2: गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहे हैं?
4: मैं बाबा नगर से महजबीन सोशल वर्कर बात कर रही
2: हूँ। जी जी, कैसे हैं
0: महजबीन जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
4: हाँ अच्छी हूँ, चची जान के साथ बांसुरी बजा रही हूँ। दुल्हन को सामने रखते ना लेडीज फर्स्ट,
0: इसके लिए आप चची जान के साथ बांसुरी बजा रहे हैं क्या?
4: चची जान के साथ बजा रही हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, वैसे भी चचा के पीछे पूरी फौज खड़ी है।
4: दुल्हन सामने रहती ना तो लेडीज फर्स्ट है, कुछ पकड़ लेना,
0: ऐसा है क्या? बहुत अच्छी बात।
4: हाउ आर यू मैडम?
0: आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन आफ्टर लिसनिंग टू यू महजबीन जी।
4: थैंक यू,
0: वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथ में ये थी महजबीन जी और बहुत सारे मैसेजेस और भी हैं, शामिल करेंगे हम, पर फिलहाल यहाँ पर हम आप ही में से आप ही की फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। मुनीर अली जी एक गीत की फरमाइश कर रहे हैं तो चलिए उसी ओर बढ़ते हैं, पर उस गीत से पहले कुछ अहम जानकारियाँ आप तक पहुँचानी है, अवश्य पहुँचाएंगे, जुड़े रहिएगा रेनबो एफएम के साथ। और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम हेलो रेनबो। और यदि आप हेलो रेनबो में अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 2323003023234821 या फिर 2970417 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर ये है आप ही में से आप ही की फरमाइश आप ही के लिए, पर उससे पहले कुछ अहम जानकारियाँ।
5: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్స్ ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓలకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్లో ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి ఇచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
6: FM Rainbow 101.9.

0: ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్స్ ఇస్తారు. ఓటర్లు ఆ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓలకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
2: और साथियों, आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम हेलो रेनबो. और आज हमने आपसे यही पूछा है कि चैन से जीने के लिए सभी बेचैन क्यों है, तो इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है. हेलो रेनबो.
3: हेलो.
2: नमस्कार. नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
3: नमस्कार नमस्कार, मैं रमणैया बात कर रहा हूँ.
2: बताइए रमणैया जी.
3: तो ये छोटी की बात है ना, अंटे चिन्ना संघटने मतलब पब्लिक तैयार అయిపోతున్నారీ.
2: हां,
3: అంటే ఫ్యామిలీ నుంచి నేను చెప్తున్నాను.
2: చెప్పండి.
3: ఒక ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు కలిసారు అనుకోండి,
2: हां,
3: మొత్తం దునియా పూరా బడా చాలా ఎక్కువగా అయిపోతున్నది.
2: అది ఓకే ఓకే. ఇంకా
3: అంటే छोटी बात, అంటే छोटी है ना.
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वैसे आप छोटी बात के साथ साथ ना गलत बात भी कर रहे हैं प्रभाकर जी, क्योंकि आप रमणैया जी बात नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है. और चलिए साथियों, प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है. हेलो रेनबो. लगता है इन्होंने अपना कॉल कर दिया, इन्हें मुझे मेरी आवाज पसंद नहीं आई हो. हेलो रेनबो.
4: हेलो प्रीति जी, गुड आफ्टरनून.
2: हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी आफ्टरनून. कौन बात कर रहे हैं?
4: मैं मोहम्मद अफजल गोलकुंडा फोर्ट से बोल रहा हूँ.
2: गोलकुंडा फोर्ट से मोहम्मद अफजल साहब जुड़े हमारे साथ, स्वागत है. सुरभि जी भी आपसे बात करना चाहती हैं.
5: कैसे हैं आप अफजल जी?
4: हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैडम, ठीक है, धन्यवाद.
5: बताइए सर.
4: मैडम, किसी के पैर में जूते नहीं है तो किसी को पैर नहीं है.
5: जी जी जी.
4: तो ये अगर अपन देख लेंगे चलेंगे तो अपने को बेचैनी नहीं होगी, चैन ही रहेगा. और जो है ये याद रख लेना चाहिए इंसान को, हम सबको परलोक सिधारना है. अगर ये भी याद रख लेंगे तो हम कुछ बेचैनी होगी नहीं, चैन से जिएंगे हम.
5: जी जी जी, मतलब जो भी रह जाना है सब यही रह जाना है.

0: चिंता से चतुराई घटे, जिससे घटे शरीर,
1: जी
0: चिंता करना ही क्यों।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही,
0: ऐसा भी है, अपने को रवाना होना है, चले जाना है दुनिया से,
1: सही है। जब जाना ही है तो क्या दूसरों को
0: तो देखते
1: देखना,
0: नहीं क्यों। जितना नसीब में होगा वो तो देखते ही रहेंगे, लेकिन
1: बिल्कुल सही
0: कोशिश करने के बाद वो भी
1: जी, बिल्कुल
0: कोशिश
1: सही
0: तो
1: बोला
0: इंसान
1: आपने
0: को
1: अफजल
0: करनी
1: जी।
0: चाहिए।
1: जी,
0: थैंक यू मैडम।
1: थैंक यू, थैंक यू अफजल जी आपके अच्छे सजेशन के लिए। हेलो रेनबो,
2: हेलो
1: हेलो,
2: हेलो हेलो मैडम जी, कैसे हैं मैडम जी? के
1: अच्छी हूँ मैं, सुरभि बोल रही हूँ सर, कौन बोल रहे हैं?
2: रमेश बात कर रहा हूँ। प्रीति, प्रीति मैडम कहाँ है?
1: प्रीति जी भी साथ में ही है। रमेश जी, के
2: प्रीति
1: रमेश जी, उस्मानगंज से स्वागत है आपका।
2: जी बिल्कुल स्वागत है आपका भी, हमारा तो स्वागत है आपका, हमारे कार्यक्रम में होता है कुछ ही हमारे। शादी
1: नहीं,
2: क्या
1: आपकी
2: नहीं
1: बात समझ नहीं आई,
2: आपकी?
1: क्या बताया आपने? हाँ
2: हेलो,
1: जी, हाँ जी,
2: हेलो
1: बताइए।
2: क्या
1: टॉपिक है चैन से जीने के लिए सभी बेचैन क्यों हैं?
2: बोले?
1: चैन से जीने के लिए सभी बेचैन क्यों हैं?
2: हाँ, चैन से जीने के लिए, चैन से अपना दिल दिल खुश रखना, दिल शांति रख देना, और जो अपना FM रेनबो सुनते रहना, बस वो
1: अरे
2: रहते
1: बहुत
2: रहते
1: बहुत
2: रेनबो
1: बढ़िया,
2: सुनते,
1: बहुत बढ़िया बोले आप
2: मैंने
1: कि
2: रेनबो सुनते अंत चाल प्रशांत में होते चाल बहुत
1: जी।
2: इनका
1: हाँ, तो मतलब FM रेनबो सुनते रहिए, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी आपकी। बहुत बढ़िया साथियों, ये थे के रमेश जी उस्मानगंज से, और यहाँ पर हम अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो,
3: राधे राधे।
1: राधे राधे राधे राधे मुरली जी।
3: सुख चैन से रहना है तो राधे राधे कहना है प्रीति जी और सुरभि जी।
1: हम तो सुख चैन से रहेंगे, राधे राधे राधे कहेंगे मुरली जी। राधे
3: जी
1: राधे मुरली जी,
3: कैसे हैं आप लोग?
1: बस बढ़िया है, बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है सर।
3: इन्हें रहना चाहिए, हमारा नहीं भगवान का रहना चाहिए। हमारा
1: जी, लेकिन लेकिन नहीं, मुरली जी, भगवान खुद तो आएंगे नहीं ना आशीर्वाद देने के लिए, आप जैसे लोगों के थ्रू ही भेजेंगे।
3: बस वो ओहदा हमारा दिए, वो स्थान हमारा दिए, बहुत बहुत थैंक यू।
1: वेलकम, बताइए।
3: आई एम ग्रेटफुल टू दैट। एक बात कहता हूँ मैं प्रीति जी,
1: जी बताइए।
3: इंग्लिश मनी बड़े सो है, हिंदी मन छोटा हुए सो है,
1: बहुत
3: उसके वास्ते
1: खूब,
3: चेन चेन दूर हुए सो है, बेचैन छूट रहा नहीं अपने से।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन शॉर्ट कितनी अच्छी बात आपने आप बताई कि इंग्लिश मनी बड़े सो है और हिंदी का मन छोटा हो गया
3: छोटा हुए
1: है,
3: सो
1: बहुत
3: है,
1: खूब,
3: चीन कह के दूर हुए सो है, बेचैन
1: इसीलिए
3: कह
1: सबकी
3: के छूट
1: बेचैनी
3: रहा
1: बढ़
3: नहीं।
1: गई है, बहुत
3: जी हाँ,
1: खूब बहुत खूब,
3: और एक बात कहना चाह रहा हूँ, चीन के लिए स्काई लिमिट है प्रीति जी।
1: बिल्कुल
3: जब मन छोटा करे तो वो खान से रखेंगे अपन।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, मन बड़ा करना चाहिए, मनी की जगह आपको
3: और
1: मन बड़ा करना चाहिए। बहुत अच्छी
3: बस
1: बात आपने साझा की।
3: छोटा सा नालुगु पदाल कविता चेप्तान,
1: चेप्पंडी
3: चिन्नदी
1: चेप्पंडी,
3: मंचिगा उंटदी हिंदी लेने।
1: चेप्पंडी।
3: जिंदगी से बड़ा सजा नहीं है
1: जिंदगी से
3: गुना
1: बड़ी
3: क्या,
1: सजा नहीं है।
3: गुना जिंदगी से बड़ा सजा नहीं है, गुना क्या है पता नहीं,
1: गुना क्या है पता नहीं है,
3: इतना हिस्सों में बटा हुआ खुद के लिए हिस्सा ही बचा नहीं। आज
1: क्या
3: तो फिर वहां
1: बात
3: पे भाई भाई पे भी बेचैन बेचैन
1: बेचैनी
3: किसी से करा
1: बेचैनी,
3: देता।
1: बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात आपने साझा की मुरली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए साथियों, स्टूडियोज की घड़ी ऐसे भागे जा रही है कि क्या ही कहूँ आपसे, और सूरज की घड़ी में 1:36 और 52 सेकेंड हो चले हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस आकर हैं, मैसेज भेजे हैं अशोक जी ने, और उससे पहले भी हमने अशोक जी के यस मैसेजेस शामिल किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो चलिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेजेस भेजने के लिए, यहाँ पर एक जानकारी आप तक पहुँचा दिए देते हैं साथियों, स्टे ट्यून्ड।
4: ईरानी चाय,
5: बन मस्का,
4: हैदराबादी बिरयानी,
5: टंग दी कबाब,
4: कुर्बानी का मीठा,
5: शहदूद मलाई,
4: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
5: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
4: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
5: From 2 to 3 PM every day on FM Rainbow 101.9.
4: It's not just food.
5: It's culture, history and flavor rolled into one.
4: Jashne Hyderabad!

0: Welcome back, my dear listener. You are listening FM Rainbow 101.9 with your RJ Surbhi and RJ Preeti.
1: Hello.
0: Hello. Hello, Rainbow sir. कौन बोल रहे हैं?
1: Madam, my radio show in Sarwar Ali, Zafargarh, Hyderabad से.
0: अरे Sarwar Ali जी, बहुत बहुत नमस्कार. कैसे हैं आप?
1: जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है.
0: जी जी जी.
1: जिंदगी हो या साइकिल, चैन का होना जरूरी है मैडम.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला कि जिंदगी
1: कुछ नहीं हो सकता.
0: बिल्कुल बोल, नहीं तो साइकिल आगे ही नहीं बढ़ेगी.
1: मर के भी चैन ना मिले तो किधर जाएंगे बोला.
0: जी सही सही सही बोल रहे हैं आप.
1: जिंदगी जीने के लिए मस्त जीना.
0: जी बिल्कुल.
1: जीता तो जानवर भी है, लेकिन इंसान के जीने में और जानवर के जीने में यही फर्क होता है. इंसान इंसान के ऐसा जीना.
0: जी जी जी
1: जी. देख के तकलीफ का, दूसरों की तकलीफ देख के अपने को एहसास होना, वही जीना है.
0: बिल्कुल सही सही है सर.
1: ये क्या जिए, तू जिए दिल
0: जमाने के लिए. जी जी सही है.
1: ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो. गमों का दौर भी आए तो सर
0: उठा कर जियो. सही है सर.
1: ऐसा क्यों? मैं ये गाने इसलिए गए, मेरे गानों का रेडियो का ही शौक है.
0: जी सर, आपके शौक से ही हमारा एफएम रेनबो चलता है सर. आप जब तक शौकीन रहेंगे.
1: अपने को परेशान होने का टाइम ही नहीं मिलता मैडम.
0: जी जी जी.
1: से भरा सीना रखना, हंसती हुई नजर रखना.
0: जी जी जी सर.
1: दिल में जितने भी आज का दौर ऐसा है, अगर अपनी परेशानी दोस्त को बोले तो परेशान हो जाता, दुश्मन को बोले तो खुश हो जाता.
0: जी सर जी.
1: ऐसा है
0: तो परेशानियां आए भी तो दूर करके चलना है आगे, है ना सर.
1: बस बस, आंसू को पसीने में बदलो मोहब्बत, मेहनत से नसीब बदलता है बोलते अपन.
0: जी सर, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद. जी जी जी सर.
1: आप कमर पर दरिया में भी ढहे रहे तो आपको हाथ से लेके पीना पड़ता पानी, आपके मुंह में कोई नहीं डालता.
0: नहीं सही है सर. जब तक करेंगे नहीं तब तक कहीं आपको सुख भी नहीं मिलेगा, करना भी जरूरी है. बहुत बढ़िया आपने अपनी बात साझा की. बहुत बहुत धन्यवाद सरवर अली जी आपका.
1: आपका कीमती वक्त ले लिया.
0: नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू. हेलो रेनबो. हेलो हेलो रेनबो.
2: हेलो, हाउ आर यू
0: सर? फाइन सर, बहुत बढ़िया. कैसे हैं आप?
2: हम तो बहुत बढ़िया है
0: सर. कौन बोल रहे हैं?
2: हम श्रीनिवास राव जी.
0: अरे श्रीनिवास राव जी, बढ़िया. कैसे चल रहा है?
2: बहुत जिंदगी जिंदगी
0: जी.
2: जिन तक में चल रहा है.
0: अरे बढ़िया. बहुत बढ़िया सर. ऐसे ही चलाते रहिए तभी मजा आता है लाइफ में. छोटी छोटी
2: देखना बोले तो कैसा है
0: जी.
2: अभी अंधेरी में बात कर रही है. अंधेरी की मतलब
0: जी.
2: तो कोई मुरली बात करी है और मेहर बाबा बात करी है, रमणीया बात करी है
0: जी.
2: हाँ अंधेरी में है ये. आपको स्पेशली देखना बोलता कैसा?
0: सर कैसा
2: कैसा बोला, आप ही बोलना
0: जी सर. हेलो हेलो हेलो. अरे लगता है इन्होंने अपना कॉल कट कर दिया है. ओ सॉरी साथियों, जब भी अगर आप कॉल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि रेंज में आके बात करें, ताकि आप बात करते करते आपकी बात कट ना हो, आपका कॉल कट ना हो. स्टे ट्यून्ड.
3: ब्रो ఆకలేస్తుంది, బిర్యానీ తిందామా?
4: ఏ ఎప్పుడు బిర్యానీ ఏం తింటాం, పద హలీం తిందాం.
3: తిందాంలే గానీ హలీం అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా?
4: హలీం ఎక్కడి నుంచి రావడం ఏంటి, మన హైదరాబాదే కదా.
3: కాదు, హలీం ఒక పర్షియన్ డిష్ నుండి ఎన్నో మార్పులతో ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత పాపులర్ అయింది.
4: ఓ అవునా?
3: ఇంకా దాంట్లో చాలా న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి.
4: సరే కానీ అసలు ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు?
3: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
4: జష్నే హైదరాబాదా? అదేంటి కొత్తగా?
3: ఒక్క హలీమే కాదు, ఇలాంటి మరెన్నో డిషెస్ గురించి మనందరికీ చెప్పడానికి వచ్చేసింది
5: జష్నే హైదరాబాద్ at 2 p.m. only on FM Rainbow 101.9.
6: FM Rainbow 101.9.
0: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम हेलो रेनबो, जहां पर हम आपसे बात भी कर रहे हैं. आज हमने विषय आपसे पूछा था कि चिंता चैन से जीने के लिए सभी बेचैन क्यों हैं, और साथ ही हम आपके मैसेजेस भी शामिल कर रहे हैं. मैसेज भेजा है रीमा जी तिवारी ने. रीमा जी तिवारी कहाँ से? नवी मुंबई से. ओके रीमा जी तिवारी ने नवी मुंबई से मैसेज भेजा है, और वह कहती हैं कि हाल ही में उनकी माता जी का जो है स्वर्गवास हो गया था. बहुत दुख हुआ हमें जान के ये रीमा जी, और हम ये कहना चाहेंगे कि जो रिक्त स्थान हुआ है उसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. पर फिर भी हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको ये हानि सहने की

जो है हिम्मत दें। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि इनकी माताजी के बाद में इनके ससुर जी भी यहाँ से विदा ले चुके हैं, और ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे एवं सदगति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना है। और साथ ही इस गीत की फरमाइश जो इन्होंने की है हम प्ले कर रहे हैं। रीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। साथ ही यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप कहीं से भी किसी भी कोने से न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।

आत्मा को शांति प्रदान करे एवं सदगति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना है। और साथ ही इस गीत की फरमाइश जो इन्होंने की है हम प्ले कर रहे हैं। रीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से। साथ ही यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप कहीं से भी किसी भी कोने से न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: और साथ ही आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा था कि चैन से जीने के लिए बेचैन, हम सभी बेचैन क्यों हैं। तो इस पर कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
1: हेलो रेनबो।
0: हेलो हेलो, वेलकम वेलकम सुषमा जी, कैसे हैं आप?
1: हेलो हेलो प्रीति जी, सुबह से बेचैन कर रखा है आपने तो।
0: चलिए, लेकिन अब तो चैन मिल गया ना।
1: वैसा नहीं, सुरभि जी से भी बात करना चाहते, लेकिन आप लोग हमको पहचान दे रहे हैं जी करके।
0: नहीं तो अब आपको सुरभि जी से भी तो पहचान बनानी है, बनाइएगा।
1: वो बनाएगी, लेकिन आपसे बात करने का मेरा आज इंटेंस था, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं बात नहीं करी मालूम, क्योंकि मैं बहुत कम बात कर रही है, फ्रेंड पे कहीं को बोलते टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, क्या करूँ बोलो।
0: जी जी जी बिल्कुल, आप
1: इसीलिए आपसे बात करेंगे करके, क्योंकि सुबह से बैठे और गाने आप बात इतना अच्छा लगा आज, थैंक यू सो मच। हाँ, चैन के बारे में बोले तो देखो प्रीति जी, अभी जिंदगी के इसमें तो बेचैनियां तो बहुत है, लेकिन हाँ कभी भी जानबूझ के किसी की चैन मत कीजिए, आप बेचैन हो जाएंगे।
0: बहुत अच्छी बात सुषमा जी,
1: अपनी अपनी बेचैनियों को आप कंट्रोल में रखिए। हाँ, कभी कभी मन करता है तो चल कोई चैन खींचता तो उसकी भी तो
0: ये तो आप सीधा बेचैनी से चेन खींचने पे आ गए सुषमा जी। चलिए, बहुत अच्छी बात, मतलब ये तो जोक ऑफ द मिलेनियम हो गया सुषमा जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और साथियों, जल्दी से अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो। लगता है कि ये कॉलर हमारी आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रुकते हैं एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, स्टे ट्यून्ड।
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్స్ ఇస్తారు. ఓటర్లు ఆ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓలకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి ఇచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
0: FM Rainbow 101.9 और दोस्तों, आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा था कि चैन से जीने के लिए सभी बेचैन क्यों हैं, और उस पर बात करने के लिए कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
3: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम।
0: हैप्पी आफ्टरनून, कौन बात कर रहे हैं?
3: ఓం శాంతి, నమస్కారం అండి. నా పేరు పోలిశెట్టి మెహర్ బాబా, జూబ్లీస్ బాత్కర్ మేడం.
0: మెహర్ బాబా, స్వాగత్ హే ఆప్కా, కైసే హే ఆప్
3: జీ? ప్రీతి ప్రీతి మేడం కు ఏక్ నమస్కార్, సుర్భి మేడం కు ఏక్ నమస్కార్ జీ.
0: और प्रीति और सुरभि की तरफ से आप दोनों को, आपको हम दोनों की ओर से एक नमस्कार. नमस्कार सर.
3: नमस्कार इनको, प्रीति मैडम को एक नमस्कार आप.
0: लेकिन हम दोनों मिला के आधा आधा नमस्कार आपको, एक नमस्कार करेंगे.
3: आज भी आई तो मेरा बीवी आके मेरे को वार्निंग दिया, तुम फोन बात करते रहो, एफएम रेनबो सुनते रहो, पेट भर जाएगा. एफएम रेनबो लो, एफएम रेनबो इन लोग आके तुम्हारे को खाना देगा, तुम्हारा पेट भर जाएगा. तुम दो फोन खराब कर दिया, तीसरा फोन भी खराब करो. फोन बोल के वार्निंग.

0: देखे गए मैडम। हेलो मैडम,
1: और फिर भी आप नहीं, आपकी
0: वो लेडी प्रभाकर राव जी का बात है ना, बहुत अच्छा रहता मैडम, फैमिली एक्टर के जैसे बात करते रहते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप सुन लिया ना मेहर बाबा बोल,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मेहर बाबा जी। और देखिए हिम्मत मेहर बाबा की जी दोस्तों, कि इन्होंने, इनकी वाइफ ने जब इनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जबकि वार्निंग दिए, फिर भी इन्होंने कॉल किया। चलिए अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, होपफुली लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हेलो रेनबो।
2: हेलो रेमबो पटोलोन, आदाब प्रीति जी, सुरभि जी, सभी सुनने वाले भाई बहनों, दोस्तों को भी प्यार भरा सलाम आदाब। और अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको सभी को खुश रखे, आबाद रखे, और जितना है उतने में शुक्र अदा करने की, चैन से रहने की हिदायत अता फरमाए।
1: बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद
2: जी जी जी। देखिए सुरभि जी और प्रीति जी, ये है कि हम हवस और अचबर, वो कहते हैं ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पर पल की खबर नहीं।
1: बहुत सही।
2: हो जाएंगी तो
1: बिल्कुल,
2: लेकिन हम इसको भूल चुके हैं। हमारे मोहम्मद अफजल साहब को सलाम है मेरा, उसी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि हवस और लालच हो गई है, भूल गए हैं हम, हमको दौलत को ही सब कुछ समझ लिया। चैन हमारे पास ही होता है, हम चैन की कदर नहीं करते, बेचैनी को ढूंढ ढूंढ के अपने करीब लाके अपन बेचैन हो जाते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने, अपने नादानी से होते हैं। बहुत सही बात आपने फरमाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए शेर खान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और चलिए यहाँ पर हम जल्दी से अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया संक्षेप में अपनी बात साझा करें। हेलो रेनबो।
3: गुड आफ्टरनून प्रीति जी।
1: हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी आफ्टरनून। नरसिम्हा रेड्डी साहब प्रेमावती पेट से स्वागत है आपका
3: जी। कैसे कैसे हैं मैडम?
1: ऊपर वाले का उपकार है, आपकी शुभकामनाएं हैं, और क्या चाहिए अच्छी जिंदगी के लिए बताइए।
3: चलिए चलो चलो ऐसे ही रह जीजिए। अब ये क्या है, चैन के बारे में बोल रहे ना मैडम?
1: चैन से जीने के लिए हम सभी बेचैन क्यों हैं, जबकि चैन से जीना है।
3: इसीलिए बेचैन से रहते मैडम, गलत काम करते ना मैडम, इससे मैं क्या बेचैनी, मैं वो गलत कर दे उसी में रह जाता आदमी। इसीलिए जो है ना, जो भी काम करे किसको भी का काम ईमानदारी से करो, सही करो, अच्छा करो, गलत मत करो, तो अपने आप को चैन से रह सकते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने नरसिम्हा रेड्डी साहब प्रेमावती पेट से, बहुत सिंपल शब्दों में आपने बहुत अच्छी बात समझाई है। बहुत अच्छा लगा साथियों आपसे जुड़कर, जिनकी हम कॉल्स ले लिए, जिनकी हमसे बात हो पाई है उनके लिए ठीक है, और जिनकी हम बात नहीं कर पाए उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और फिलहाल मैं आपकी धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति और आरजे सुरभि इसी वादे के साथ विदा लेते हैं कि पुनः बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हम आपको यही कहेंगे कि
4: कभी अलविदा ना कहना।

बाय प्रवलिका। हाँ सामीन, आप सुन रहे थे प्रवलिका को तेलुगु प्रोग्राम में। अब आगाज होता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का, क्योंकि इस वक्त रात के 9:30 हुए हैं। आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। तो चलिए आगाज करते हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

0: आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और मैं हूं आपकी आरजे नूर अफशाम। आज के इस नए रंग प्रोग्राम में हम जो प्रोग्राम्स आपको सुनाने वाले हैं उसमें है हरफ ताबिंदा, इसके अलावा मिलादुन नबी पर एक तकरीर आप सुनेंगे, और बेदारी कायनात सिलसिले के तहत आज आप सुनेंगे ब्रिटिश इंडिया में ज़िरात, और आपका मनपसंद प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा भी शामिल बज्म होगा। आखिर में आप सुनेंगे पयाम शब। तो आइए आगाज हम करते हैं आज के इस प्रोग्राम का हरफ ताबिंदा से, पेशकश है एम ए हाई की।
1: तालीमी निज़ाम में अखलाकियात, तरबियत और सालेह माशरे के तस्वुर का फुकदान, बच्चों की तरबियत और ज़हनी नशोनुमा का बेहतरीन ज़रिया वालिदैन थे और आज भी वालिदैन ही हैं। ख़ानदान, कौम व मुल्क के लिए जो नई इकदार मुज़िर हैं, इनसे बच्चों को दूर रखने की कोशिश वालिदैन ही कर सकते हैं। बच्चों को महंगी महंगी फ़ीस के कॉन्वेंट स्कूलों में भेजकर अपनी ज़िम्मेदारी से वालिदैन अगर बचेंगे तो लाजमी है बच्चे बेमहार होने से नहीं बच सकेंगे। उस्ताद या उस्तानी तरबियत का शरबत भरा गिलास किसी दर्जे के बच्चे को नहीं पिला सकते। वालिदैन ही अपने हुस्न सलूक से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रफ्ता रफ्ता हर दिन पिला सकते हैं। इसीलिए बच्चों की सोहबत व दोस्ती यारी और गैर अखलाकी व गैर समाजी हरकत पर भी निगाह रखने की वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। जो वालिदैन ऐसा नहीं करते या नहीं करेंगे, वो कल बच्चों को दोष देने से भी बाज रहने के लिए तैयार रहें। देखा जाता है बच्चे क्लासेस में एक दूसरे के साथ मजहब और ज़ात बरादरी की नस्बत से यारी दोस्ती बनाते और निभाते हैं। हमदर्दी का जज्बा कम से कम होता जा रहा है। तबई खसलत, मुरवत, मिलनसारी और फराग दिली के साथ एक दूसरे से पेश नहीं आते। इसकी एक वजह यह है कि बच्चे घरों में नफसा नफसी के माहौल में परवरिश पा रहे हैं। बड़ों की आपसी बातचीत में नफा नुकसान हायल होने लगा है। अपनी ज़ात का फ़ायदा हर बड़े को अजीज है, इसीलिए यही सोच बच्चों के जहनों में तेज़ी से पनप रही है। पहले के बच्चों में मासूमियत मिलती थी, अब के बच्चों में मासूमियत नाम की कोई शय है नहीं। मादी तरक्की पसंदी की हवा का असर ही कहा जाएगा कि बच्चों के जहनों में मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली है, हरकत की जगह शरारत ने ले ली है। बड़ों की देखा देखी, इनमें भी दिखावा करने और मोबाइल रील बनाने का शौक़ ज़िंदगी की सच्चाइयों से इन्हें दूर किए हुए है। हक़ गोई, सच्चाई, हक़ पसंदी, सिला रहमी, बड़ों की इज्जत व खिदमत, पड़ोसियों के साथ अच्छे मामलात, सभी के साथ हुस्न सलूक, मजबूर व माजूर मिस्कीन के साथ किसी किस्म की हमदर्दी, गरीबों मजलूमों के साथ इशार व क़ुरबानी और जानिसारी, तवाज़े, वज़ेदारी, सखावत जैसे औसाफ बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। बच्चों में नेकी का जज्बा परवान चढ़े, हमदर्दी करने वाले बने, नेकी आम करें, बदी से बचें, नेक बने। इसीलिए तालीम के साथ तरबियत का होना भी या ज़ोर देना भी वालिदैन व सरपरस्तों के लिए बेहद ज़रूरी है। इंसान से इंसान की मोहब्बत, इंसानी मसावात का हर एक फार्मूला तब तक कारगर नहीं हो सकता जब तक बच्चे की इब्तदाई परवरिश में नेक तरबियत, तालीम के साथ अखलाक और तहारत व पाकिजगी, वक्त की पाबंदी, मेहनत व ईमानदारी के अनासर दाखिल नहीं किए जाएंगे। बच्चों के लिए फ़र्ज़ है कि तालीम

जवानी में आप अपनी सच्चाई, अमानतदारी और पाकिज़ा किरदार की वजह से बहुत मशहूर हुए। अहले मक्का आपको सादिक और अमीन कहते थे। आप तिजारत करते थे और हमेशा दयानतदारी से मामलात अंजाम देते थे।

आपने 25 साल की उम्र में हज़रत खुदेजा से निकाह फरमाया। हज़रत खुदेजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत नेक और समझदार खातून थी। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया।

जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो आप अक्सर गार हिरा में इबादत और गौर व फिक्र फरमाया करते थे। 610 ईस्वी में गार हिरा में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पहला पैगाम लेकर आए और फरमाया, इकरा यानी पढ़िए। इस वाक़े से आपकी नबुवत का आगाज़ हुआ।

आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपने इंसानों को तौहीद का दर्स दिया, अच्छे अखलाक की तालीम दी, कमज़ोरों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने की तलकीन फरमाई और हुस्न सलूक का रास्ता दिखाया। आप बच्चों से बेहद मोहब्बत करते थे और बड़ों का एहतराम करते, पड़ोसियों का ख्याल रखते और गरीबों मिसकिनों की मदद फरमाते, दुश्मनों के साथ भी अदल व इंसाफ किया करते, माफ़ी और दरगुजर की मिसालें कायम की आपने।

मजदूरों की आमदनियों में इजाफा अमल में आता है, जिसके नतीजे में सनअती अशिया की तलब में इजाफा होता है। हिंदुस्तान की बरामदात में ज़राई शोबे को अहम मुकाम हासिल है। मुल्क के खाम कौमी पैदावार में आज भी ज़राई पैदावार का एक अहम मुकाम हासिल है, यानी खाम कौमी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा ज़राई शोबा फरम करता है। 1977 तो 78 के खाम कौमी आमदनी के अदा शुमार में ज़राई शोबे का हिस्सा 44% हिस्सा था। पैदावारी सलाहियत के तकाबली जायजे के लिए

ये कमीशन ज़राई अशिया की कीमतों के सिलसिले में हुकूमत को पॉलिसी बनाने में मशवरे फरम करेगा। इसी तरह किसानों से रास गजाई अजनास के हुसूल के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नामी इदारा कायम हुआ। इस इदारे के जरिए अजनास की तकसीम का काम भी लिया गया। इन तमाम इस्लाही कामों के बावजूद ज़राई शोबे की तरक्की के नतायज मायूस किन रहे, क्योंकि मुसलसिल दो साल तक यानी 1965 से लेकर 1967 तक मुल्क की शदीद खाद्य साली के सामना करना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन ने भी हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। इन हालात में ज़राई शोबे की पैदावार घट गई। जंगी जरूरियात की तकमील की खातिर ज़राअत के लिए मुख्तसिस हुकूमती सरमायाकारी के दफा की तरफ मुंतकिल किया गया। अब हिंदुस्तान को बड़े मकदार में गजाई अजनास दरामद करना पड़ा ताकि अवामी तकसीम का निज़ाम बरकरार रह सके। इस मंसूबे के दौरान दीगर शोबों की तरक्की भी इत्मीनान बख्श नहीं थी, इसलिए चौथे पंचसाला मंसूबे को मुलतवी किया गया और मुल्क में तीन साल मंसूबों पर अमल दरामद किया गया और इसी मुद्दत में ज़राई तरक्की के लिए एक नई हिकमत अमली अख्तियार की गई। इस नई ज़राई हिकमत अमली में जदीद असरी तरीके पैदाइश के इस्तेमाल के साथ अला किस्म के तखुम कीमियाई खाद और आपाशी की सहूलतों को फराहमी में इजाफा भी शामिल था। इस नई हिकमत अमली अख्तियार करने के नतीजे में ज़राई शोबे की पैदावार में खलील मुद्दत में काबिल लिहाज इजाफा हुआ। इसीलिए हम इस मरहले को सब्ज इनकलाब का नाम देते हैं, जिससे पंजाब और हरियाणा के साथ शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों में गेहूँ की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। लेकिन आंध्र प्रदेश, बिहार और मगरब बंगाल के सूबों में चावल की पैदावार में इजाफा नहीं हुआ। तीन सालाना मनसूबों के अख्तिताम के बाद चौथा पंचसाला मनसूबा मरतूब किया गया, जो 1970 तक 74 की मुद्दत पर मुश्तमिल था। इस मंसूबे के दौरान ही नई ज़राई हिकमत अमली के नफाज को ज़्यादा अहमियत दी गई। ज़राई असलाहत पर अमल दरामद ज़राई शोबे के जदीद तरीके पैदाइश यानी मशीनी ज़रात के अहिया के साथ किसानों का मुनज़्ज़म इदारों के जरिए खर्च की फरहमी की सहूलतें जैसे मकासिद पर मुश्तमिल काम शुरू किए गए। इस मंसूबे के दौरान चंद मखसूस प्रोग्रामों पर भी अमल दरामद हुए, जिनमें फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी काबिल जिक्र है। पाँचें, छठे और सातवें मनसूबों के दौरान भी ज़राई शोबे की तरक्की को अहमियत दी गई है। हुकूमत की जानिब से कई अमली इकदामात किए गए। पहले पंचसाला मंसूबे से लेकर सातवें मंसूबे तक ज़राई शोबे पर हुकूमत की तवज्जो के नतीजे में हिंदुस्तानी ज़राई शोबे को तरक्की अमल में आ रही है। 1950-51 ईस्वी में 58.5 मिलियन टन ज़राई पैदावार हासिल हुई तो 1978-79 में मुल्क में 137.9 मिलियन टन ज़राई पैदावार हासिल हुई। इस मुद्दत के दौरान गजाई अजनास की पैदावार का 57.1 से बढ़कर 139.3 हो गया और गैर गजाई अजनास का 62.0 से बढ़कर 134.8 हो गया। पाँचवें और छठे सातवें मंसूबों के दौरान भी ज़राई शोबे की तरक्की को अहमियत दी गई। हुकूमत की जानिब से कई अमली इकदाम किए गए। पहले पंचसाला मंसूबे से लेकर सातवें मंसूबे तक ज़राई शोबे पर हुकूमत को तवज्जो के नतीजे में हिंदुस्तान ज़राई शोबे की तरक्की अमल में आ रही है। 1950-51 में 58.5 मिलियन टन ज़राई पैदावार हासिल हुई तो 1978-79 में मुल्क में 137.9 मिलियन टन ज़राई पैदावार हासिल हुई। इस मुद्दत के दौरान गजाई अजनास की पैदावार का 57.1 से बढ़कर 139.3 हो गया और गैर गजाई अजनास का 62.0 से बढ़कर 134.8 हो गया। इसी तरह 1950 से लेकर 1982 के अरसे में गजाई अजनास की पैदावार में 41 मिलियन टन से बढ़कर 133 मिलियन टन तक पहुँच गई। 1983-84 में तो इस शोबे ने 152 मिलियन टन गजाई अजनास पैदा किया। पैदावार के रुझानात के तजिये से पता चलता है कि इसमें उतार चढ़ाव पाया जाता है और इस बात का मुशाहिदा किया गया है कि मंसूबे के आखिरी साल में पैदावार की सतह हमेशा ऊंची दर्जे पर कायम नहीं रही। मसलन पहले पंचसाला मंसूबे में गजाई अजनास की पैदावार का नशाना 63 मिलियन टन का बनाया गया था, लेकिन पैदावार 76 मिलियन टन हासिल हुई। हालांकि 1953-54 में इस शोबे ने 70 मिलियन टन अनाज पैदा किया था। दीगर मंसूबों में भी यही हालात पाई जाती है, यानी कम व बेशी पाई जाती थी। इसकी अहम वजह मौसमी हालात की खराबी है। ज़राई शोबे की पैदावारी सलाहियत में इजाफा का सही अंदाज़ा मौसमी हालात में तब्दीली के उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करने के बाद ही हो सकता है। इसमें शक नहीं कि हिंदुस्तान के ज़राई शोबे की पैदावार में इजाफा हुआ है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मुख्तलिफ
اہم ذرائع اشیاء کی ترقی کی نوعیت بھی معلوم کی جائے اور

0: हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवर और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है। तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
1: सामिन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग 101.9 FM MHz पर। चलिए हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं और अब हम आपको सुनाते हैं गीत सुरीले गाते जा। गीत तो सुरीले आप सुनेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें हम करेंगे, क्योंकि नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट के तहत आज हम बात करेंगे आंखों के अति की। आंखें अल्लाह ताला की अदा करदा बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है। हम इन्हीं आंखों से अपने वालिदैन के चेहरे देखते हैं, खूबसूरत दुनिया देखते हैं, खूबसूरत मनाजिर से लुत्फंदोज होते हैं, किताबें पढ़ते हैं और दुनिया के रंगों को महसूस करते हैं। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर किसी इंसान की आंखों की रोशनी चली जाए और वह दुनिया को देखने से महरूम हो जाए तो उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में आंखों का त्याग किसी के लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। बास सूरतों में मरने के बाद अत्या किए गए आंखें किसी ऐसे शख्स के इलाज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिसे किसी बीमारी या नुकसान की वजह से बीनाई का मसला हुआ हो। यूं एक इंसान की दुनिया से रुखसत होने के बाद भी इसके अतिये से किसी

ये सुरीले गाता जा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आंखों के अत्ये की। अक्सर लोग आंखों के अत्ये के बारे में बहुत सी गलत फहमियों का शिकार होते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि आंखों का अत्या लेने से चेहरा खराब हो जाता है, जबकि मुनासिब तिब्बी तरीक़ेकार के ज़रिए अत्या किया जा सकता है और लिया जा सकता है और उमूमन ज़ाहरी शक्ल में कोई नुमायाँ तब्दीली नहीं आती। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय तिब्बी इदारों और माहरीन से मालूमात हासिल करें। आंखों का अत्या एक हसास तिब्बी अमल है और इसके लिए बाकायदा तरीक़ेकार और क़ानूनी और तिब्बी उसूल मौजूद होते हैं। एक और अहम बात यह है कि आंखों का अत्या सिर्फ एक फ़र्द का फ़ैसला नहीं, बल्कि ख़ानदान के लिए भी एक अहम मामला है। इसलिए अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में आंखें अत्या करने की ख्वाहिश रखता है तो इसे चाहिए कि अपने करीबी अहल खाना को भी इस ख्वाहिश से आगाह करें, ताकि ज़रूरत के वक्त वो इस फ़ैसले से वाकिफ़ हों।

गीत सुरीले गाता जो आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर, और हम बात कर रहे हैं आई डोनेशन यानी आंखों के अतिये की। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ें जमा करता है, जैसे घर, लिबास, किताबें, दौलत और दूसरी अशिया, लेकिन ये सब चीज़ें एक दिन यहीं रह जाती हैं। अगर मरने के बाद हमारे जिस्म का कोई हिस्सा किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए और इसे ज़िंदगी में रोशनी देखने का मौका मिले, तो इससे बढ़कर इंसानी हमदर्दी की क्या मिसाल हो सकती है। आँखों का अतिया दरअसल हमें यह सबक देता है कि इंसान अपने बाद भी इंसानियत की खिदमत कर सकता है, और ये खिदमत सिर्फ बीनाई वापस दिलाने तक महदूद नहीं। एक शख्स को नज़र आना, इसके लिए तालीम, रोज़गार, खुद इतमादी और आज़ादाना ज़िंदगी के नए रास्ते खोल सकता है। जो शख्स दुनिया को दोबारा देखने के काबिल हो जाए, इसके लिए यह सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक नई उम्मीद होती है।

आंखों के अति के सिलसिले में ये समझना भी चाहिए कि हर शख्स का अतिया करदा खरीने लाजमन किसी भी मरीज़ के लिए मौजू नहीं होते। इसलिए हमें तिब्बी जांच कराना और मुतल्लिका माहरीन और इदारे इसके लिए काम करते हैं, उनसे मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। अफसोस की बात यह है कि लाइल्मी और गलतफहमियों की वजह से बहुत से लोग अतिये के बारे में सोचते ही नहीं। हमें चाहिए कि माशरे में इस मौजू पर मुस्बित और जिम्मेदाराना गुफ्तगू करें, लोगों को सही मालूमात दें और इन्हें बताएं कि अत्या दरअसल इंसानियत की खिदमत का एक जरिया हो सकता है। आंखों का अत्या हमें यह भी याद दिलाता है कि असल खूबसूरती सिर्फ देखने में नहीं बल्कि किसी की जिंदगी में रोशनी बनने में है। अगर हमारी एक छोटी सी कुर्बानी किसी दूसरे इंसान को अपने बच्चों का चेहरा देखने, किताब पढ़ने, रास्ता पहचानने या कुदरत की हसीन मनाजिर देखने का मौका दे सकती है, तो ये एक बहुत बड़ी इंसानी खिदमत है।

बचपन में सो जख्म खाते रहे और दुआ देते गए हम। बचपन में वालिदैन और असातेजा हमें सिर्फ अल्फाज नहीं सिखाते बल्कि जिंदगी गुजारने का सलीका भी सिखाते हैं। दुआएं याद कराने का असल मकसद ये था कि इंसान दुख तकलीफ और नाइंसाफी के बावजूद अपने दिल को नफरत से आलूदा ना होने दे। जिंदगी में कभी अपने ही लोग जख्म दे देते हैं, कभी हालात तोड़ देते हैं और कभी किसी की सख्त बात दिल में उतर जाती है। ऐसे वक्त में बददुआ देना आसान है मगर दुआ देना बड़े ज़र्फ़ की अलामत है। दूसरों के बुरे रवैये को अपने अखलाक की खराबी का सबब ना बनने दें। किसी ने हमें दुख दिया है तो हम किसी दूसरे के लिए दुख का सबब ना बने। लेकिन सब्र का मतलब ये भी है कि इंसान जुल्म को खामोशी से कबूल करता रहे। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है मगर दिल में इंतकाम की आग पालना जरूरी नहीं। अपने हक के लिए उठ खड़े होते हुए भी जबान से खैर और दिल से इस्लाह की दुआ की जा सकती है। याद रखिए, जख्म मिलना हमारे इख्तियार में नहीं मगर जख्म के जवाब में क्या देना है यह हमारे इख्तियार में है। अगर बचपन की दुआएं हमारे किरदार का हिस्सा बन जाएं तो इंसान खुद भी सुकून पाता है और दूसरों के लिए भी रहमत बन जाता है।

गीत सुरीले गाते जा प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे। हमारा तो दिल करता है कि आपको सुरीले गीत सुनाते ही रहें, लेकिन वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता और अब वक्त हमें इशारा कर रहा है कि आपसे विदा लेने की घड़ी आ गई है। तो चलिए चलते चलते हम आपको सुनाते हैं पयाम-ए-शब, पेशकश है नदीम अख्तर ज़ैदी की।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 एफएम मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।
1: एफएम रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। यूपीआई का एक दशक पूरा हुआ। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
2: पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक

0: मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to country's private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. India Today highlighted the importance of maintaining

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा जी। एसपी, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: Benchmark domestic indices rise, Sensex jumps nearly 300 points, Nifty settles above 24,300. Prime Minister Narendra Modi hails UPI as a major turning point in India's digital payments journey, says it is a source of pride for every Indian. And global crude oil prices decline around 3%.

घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त का रुख, सेंसेक्स में लगभग 300 अंकों का उछाल और निफ्टी 24,300 से ऊपर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में यूपीआई के बढ़ते उपयोग की प्रशंसा की, कहा यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात। और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 3% की गिरावट।

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 287 अंक यानी 0.37% बढ़कर 77,656 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 116 अंक यानी 0.48% चढ़कर 24,335 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.5% की तेजी आई, जबकि स्मॉल कैप में मामूली बदलाव से 0.1% की सुस्ती देखी गई. इससे पहले भू राजनीतिक तनाव के बीच बाजार गिरावट के साथ खुले और दोनों सूचकांक ज्यादातर समय दबाव में रहे. हालांकि कारोबार के आखिरी आधे घंटे में बाजार में जबरदस्त रिकवरी हुई और बढ़त के साथ बंद हुए. क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद सूचकांक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए. बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा रहा, जिसका मुख्य कारण क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लागू होने के बाद निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस की पहली मंथली एक्सपायरी रही.
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive zone today. The Sensex gained 287 points or 0.37% to close at 77,656. The Nifty advanced 116 points or 0.48% to settle at 24,335. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.5%, while the small-cap 100 index dipped 0.1%. Earlier, the markets opened lower amid ongoing geopolitical tensions, with both benchmark indices remaining under pressure for most of the session. However, in the final half an hour of trade, the market staged a sharp recovery and turned into positive territory. Following the closing auction session, CAS, the indices ended the day with healthy gains. Volatility remained elevated, largely due to the first Nifty futures and options monthly expiry since the implementation of the CAS.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो 2%, अडानी पोर्ट्स 1.2% और इन्फोसिस तथा ट्रेंड 1.1% ऊपर आ गए. इसके उलट एटर्नल 0.8%, एचसीएल टेक 0.7% और पावर ग्रिड 0.5% लुढ़क गए.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 25 आउट ऑफ 28 सेक्टर एज्ड अपवर्ड. Among the top gainers, telecommunications rose 1.4%, hospitals increased 1.3%, and PSU Bank added 0.8%. In contrast, mid-small private banks lost 0.25%, private banks index dropped 0.1%, and insurance dipped marginally. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,330 companies declined, 2,007 advanced and 188 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ. एसपी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है.
2: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: एसपी, आज के कारोबार में शेयर बाजार ने शुरुआती कमजोरी दिखाई, लेकिन इसके बाद शानदार रिकवरी हुई और सकारात्मक रुख के साथ क्लोजिंग हुई मार्केट की. तो आपके आकलन में इस रिकवरी के पीछे सबसे बड़े घरेलू और वैश्विक कारण क्या रहे, और इससे बाजार में मजबूत खरीदारी की वापसी हम मान सकते हैं या अभी लग रहा है कि कुछ और स्थितियां हैं?
2: देखिए, मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है, और सेकंड जो आज की एक खरीदारी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं. एक तो क्रूड के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हुए हैं, बहुत ही एस्केलेशन जो हम देख रहे थे तो शायद उसमें कुछ ऐसा पॉज यहां पे आए, तो जिससे एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो थी वो भी थोड़ा कम हो जाती हैं जब

0: फूड के प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आती है। और दूसरा जो हमने देखा, जो हमारी कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है। पीछे के कुछ सेशन जो है हमारे काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं, बीच में भले ही कुछ वॉलेटिलिटी तो जरूर रही है, लेकिन ओवरऑल जो सपोर्ट है फंडामेंटल सपोर्ट के अलावा, जो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं कॉरपोरेट अर्निंग को लेके, और दूसरा जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर जो हमने काफ़ी फोकस किया, और हमारे एक्सपोर्ट के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, 13% से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है।
1: जी
0: तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र जो मार्केट की मजबूती है वो काफ़ी अच्छी है पिछले कुछ महीनों से। भले ही वॉलेटिलिटी रहती है, जब भी कोई ग्लोबल डेवलपमेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट के ऊपर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है। अब कल कोई और कुछ नेगेटिव का कोई न्यूज़ आ जाए तो मार्केट में फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल जब भी मार्केट में कुछ भी ग्लोबली कुछ पॉजिटिव होता है तो मार्केट स्ट्रांगली रिबाउंड करती है। ये एक इंडिया की मार्केट की एक स्ट्रेंथ है, जो जहां से हमें पता चलता है कि डोमेस्टिकली वी आर वेरी स्ट्रांग बट चैलेंजेस आर फ्रॉम दी ग्लोबल साइड।
1: इसमें आपको ये लगता है कि निवेशकों का एक ट्रेंड बदल रहा है, उनके सेंटीमेंट्स भी काफी तेजी से बदलते हैं इसके साथ में?
0: बिल्कुल, उसमें क्या है कि मार्केट का अगर हम बिहेवियर देखें पीछे के 4-5 महीनों का, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है ईरान में और यूएस में, तो मार्केट में कोई ऐसी ऐसी करेक्शन जो डीप करेक्शन जाके जहां पे मार्केट वहीं पे सेटल हो जाए ऐसा नहीं देखा गया। मार्केट ने रिकवर किया है, मार्केट जब भी उसको मौका मिला तो मार्केट ने स्ट्रांगली रिकवर किया। तो कुल मिला के जो गिरावट है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि हम देखिए,
1: ओवरऑल देखें
0: जो
1: तो
0: जो ओवरऑल निफ्टी था वो 25,000 से ऊपर था, तो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी 24,000 के आसपास ऑन एन एवरेज रहता है, प्लस माइनस 23,500 से 25 तक भी चला
1: जी
0: जाता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट में कोई ऐसी डेसिलरेशन आई हो और मार्केट जाके 22,000 पे सेटल हो जाए और वहां से फिर रिकवरी का नाम ही ना ले। तो वहां पे हम देखते कि बहुत ही कुछ नेगेटिव है हमारी अर्थव्यवस्था में, कुछ नेगेटिव है, हमें हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अभी मार्केट भले ही कोई करेक्शन आती है तो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली रीबाउंड भी करती है। तो जो इसका एक दायरा है, जो
1: जी
0: जैसे मैंने बताया 23,500 से लेके 25,000 के बीच में ये पिछले 5-6 महीने से उधर ही अपना एक रेंज बाउंड
1: सो
0: बना
1: डॉक्टर
0: के।
1: शर्मा, विच डोमेस्टिक ट्रिगर्स मैटर द मोस्ट टुडे, द FII और DII फ्लोज और द रुपी स्टेबिलिटी और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज?
0: देखिए इसमें लेख साहब मेनी डेवलपमेंट्स लाइक अवर अवर फर्स्टली द इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, लाइक द क्रूड इज नाउ डिसलिरेटिंग, नॉट गोइंग सिग्निफिकेंटली अप, एंड सेकंड इज द फंडामेंटल फ्रॉम दी एक्सपोर्ट्स एंड फ्रॉम दी IIP नंबर्स, सो रिसेंट मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग, एंड थर्डली एज आई सेड द कॉरपोरेट अर्निंग्स आर वेरी सपोर्टिव, एंड फोर्थली सम स्टेबिलिटी इन दी FII इनफ्लोज ऑल्सो, दे आर द नेट बायर्स, एंड DII इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग स्ट्रांगली एंड देयर इन्वेस्टमेंट इज हायर देन दी FIIs। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर सपोर्टिंग द मार्केट, बिकॉज मार्केट स्ट्रेंथ इज शोइंग अ ग्रेट रेजिलियंस डिस्पाइट मेनी हेडविंड्स एट द ग्लोबल लेवल, लाइक वेरियस नेगेटिव न्यूज फ्रॉम ईरान एंड यूएस साइड रिगार्डिंग देयर ऑन गोइंग वॉर, बट मार्केट्स रिमेन्स स्ट्रांगली रेजिलियंट एंड बिहेव्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे व्हेन देयर इज सम पॉजिटिव न्यूज एट द ग्लोबल लेवल।
1: I have two sector related questions to you. How exposed are Indian IT and pharma to any US slowdown or policy shifts? Also, the PSU banks and financial, will they remain the index drivers, and is that sustainable?
0: यस लेख साहब, बिकॉज लास्ट ईयर 25-26 वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर द इंडियाज इकॉनमी एंड इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर, बट अवर इकॉनमी प्रूव्ड वेरी रेजिलियंट डिस्पाइट मेनी हेडविंड्स फ्रॉम द टैरिफ फ्रंट, फर्स्टली फ्रॉम द मंथ्स ऑफ अप्रैल मई जून जुलाई, देयर आफ्टर टसल इन वेस्ट एशिया, our external sector was very, very strong, and we were in a positive trajectory in our export numbers. Rather, we were higher in with US also. In our export figure. That has proved that India is not dependent on any one economy or single economy. We are diversified and our resilience is very strong. Our products are demanded at the global level. That is the strength of our products in the global market. Like during the recent 4 months, starting from April, May, June, July, our exports are showing 13.5% growth. And the merchandise exports are increasing significantly, more than 17-18%. So that is the strength of India's external sector, which is now becoming more and more resilient and competitive in the global market. So this has proven that we are our global marketplace is very strong. We are a great support in the global ecosystem. And the growth front, we are already proven that.
1: Should the markets interpret the latest U.S. sanctions on Iran? More political pressure than supply shock?
0: I believe this is more in noise, actually, the actual happenings, because there are so many developments. Sometimes they announce the positive developments that they are going to talk and talk peace. And sometimes they are announcing some sanctions. And I don't see that such sanctions are going to impact a single country, Iran or U.S. These sanctions will have a repercussion for the whole global economy. But we believe there will be some peace talk and there will be some peace process, and sanctions will not come into force.
2: एसपी आज जो मार्केट में हमने हलचल देखी है नेगेटिव से पॉजिटिव जोन में आना, इसमें मासिक डेरिवेटिव्स एक्सपायरी और क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम की भूमिका रही, तो क्या आपको लगता है कि इस नई व्यवस्था के आने से मार्केट पर किसी तरह का असर पड़ा है या एक नई राह हमें देखने को मिलेगी?
0: ठीक है, मैंने इसमें एक स्टेबिलिटी देखी है. जो डेरिवेटिव मार्केट है, खास करके जो ऑप्शंस का एक्सपायरी होता है, पहले काफी वॉलेटिलिटी रहती थी और ऑप्शंस के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल होते थे सुबह से शाम तक. तो नाउ एक स्टेबिलिटी है प्राइसेस में, जो एक अनयूजुअल कई बार ऐसा प्रीमियम रहता था जो अभी एक नॉर्मल लेवल पे देखा गया है, विच इज प्रोवाइडिंग अ ग्रेट स्टेबिलिटी टू द इन्वेस्टर्स आल्सो.
2: ओके, आगे बढ़ते हैं. सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर में 3% हिस्सेदारी की बिक्री का ऐलान किया है. मांग अधिक रहने पर अतिरिक्त 3% हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी रखा गया है, जिसे ग्रीन शो ऑप्शंस भी कहा जाता है. इस तरह से कुल संभावित बिक्री 6% तक हो सकती है. इसके लिए न्यूनतम भाव 514 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. बिक्री पेशकश आज संस्थागत निवेशकों के लिए खुल गई, जबकि खुदरा निवेशक इसमें कल भाग ले सकेंगे.
1: The Indian equity markets will operate as usual tomorrow. However, the day will be observed as a settlement holiday on account of Eid-e-Milad. A settlement holiday occurs when trading exchanges remain open, but banks and depository are closed. As depositories will remain non-operational, the transfer of shares and the pay-in and payouts of funds will be rolled over to the next working settlement day. Tomorrow, trading in the cash, equity derivatives and commodity derivatives segments on the BSE and NSE will remain fully functional during regular market hours. However, trades executed today and tomorrow will be settled on August 27, that is Thursday. Moving on, Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of unified payment interface. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. He stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. The unified payment interface, UPI, which was launched on this day in 2016, has completed 10 years of transforming digital payments in India. It has emerged as one of the most successful pillars of India's digital public infrastructure, providing an interoperable real-time payments platform. The UPI has surged almost 13,000-fold in transaction volume. Finance Ministry said that the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore to nearly 314 lakh crore during the same time period. Dr. Sharma, this is interoperable and it is a real-time payment platform, which is a great

0: एक पीछे काफी महीनों से हमने देखा कि बहुत ही कंफ्यूज्ड मोड में है मार्केट, को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है. तो
1: जी
0: दैट्स व्हाई जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है जैसे काफी एशियन मार्केट्स में वो बहुत कम हो गया है. जैसे हमारा इंडिया के उसमें हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है जब भी कोई पीस प्रोसेस आती है. लेकिन काफी मार्केट्स ऐसी हैं कि उसमें कोई ऐसा प्रोसेस भी होता है तब भी वो स्टिकी जोन में ही रहती हैं, उनमें कोई मेजर प्रभाव देखने को नहीं मिलता. तो ये भी एक कारण है.
1: Moving on, the United States has imposed sanctions under Operation Economic Outcast on nearly 60 entities, individuals, and vessels over their alleged links to Iran's military activities, procurement networks, and petroleum and petrochemical trade. In a fact sheet released by the U.S. State Department, the measures aim to further expose individuals and entities that enabled strikes against U.S. forces and allies and to restrict the revenue that the Iranian regime uses to attack its neighbors, support terrorism abroad, brutally oppress its own people, and hold the global economy hostage. Very briefly, how do you think India should react to such an Operation Economic Outcast, or how will the world at large react to the Operation Economic Outcast, and what repercussions could it have on the world economy?
0: Yes, repercussions can be in the financial markets, and because financial markets are already very volatile since the last many months or quarters. So going forward, we have to watch carefully the developments in the financial markets and stability about the exchange rate movements particularly, so that the fundamentals of the economy are not impacted or face such kind of repercussions.
1: जी, आगे बढ़ते हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए उसके पास 2 साल की योजना है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की घोषणा करते हुए इसे आर्थिक डी डे बताया है। वहीं ईरान के वित्त मंत्री अली मदनी जादे ने कहा कि उनका देश इन कदमों के लिए तैयार है और उसके पास जवाब देने के अपने साधन हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो क्षेत्र से तेल का निर्यात रोक सकता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग हॉर्मुज जल डमरों मध्य से जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकता है। एसपी, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनका कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पर, और खासतौर पर ऐसे समय में जब भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं और ऑयल्स के जो प्राइसेस और तेल की जो कीमतें हैं उनमें भी उतार चढ़ाव देखने, कभी बढ़ रहे कभी गिर रहे, भारतीय बाजारों को कैसा असर इस पर देखने को मिल सकता है?
0: देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे वॉलेटिलिटी बहुत क्रिएट होती है, मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाते हैं. लेकिन एंड ऑफ द डे जो अभी तक हमने नतीजा देखा है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि हमारी मार्केट है स्टेबल है, मार्केट में मतलब ऑन एन एवरेज जो है स्टेबिलिटी दिखाई है. एक कोई ऐसी डीप डिसेलरेशन नहीं आई जहां पे मार्केट जाके सेटल हो गई हो, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा नुकसान हुआ हो, मार्केट ने रिकवरी ना किया हो. तो मार्केट हमारी रिकवर करती है. ये जो वॉलेटिलिटी है, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आती है कभी नेगेटिव आती है, तो इनकी वजह से मार्केट में उतराव चढ़ाव जरूर है. लेकिन एक जो प्रोलॉन्ग्ड जो जिसकी हम बात करें कि करेक्शन आ जाए, वैसा मार्केट में रुख नहीं देखा गया.
1: लेकिन इसका असर अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उस पर भी काफी क्षेत्रों में नजर आने लगा है, ऐसा आपको लगता है?
0: ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी नंबर है अभी भी बहुत अच्छे से एंटिसिपेटेड है. वी विल ग्रो मोर देन 7% इन द करंट ईयर ऑल्सो, दैट इज द एस्टिमेट. दो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव प्रोवाइडेड 6.5 to 7%, 6.5 से 7% के बीच में तो बहुत सारे अनुमान है. और इसके अलावा जो जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है. जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक्सपोर्ट्स बहुत स्ट्रांग है, आईपी नंबर स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन एक स्टेबल ट्रैजेक्टरी में है. तो ऐसी जो वॉलेटाइल न्यूज है वो एक दिन दो दिन के लिए मोमेंटली कुछ ऐसी वॉलेटाइलिटी भय पैदा करती हैं. लेकिन जो जो अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म में 1 महीने में 2 महीने के अंतराल में मार्केट्स एक स्टेबल लेवल पे ही बिहेव कर रही है.
1: तो यानी निवेशकों को इस पॉइंट पर आकर के घबराने की जरूरत नहीं है?
0: जी बिल्कुल नहीं, मैं ये कहूँगा कि खास करके जो रिटेलर है उसको ऐसी मूवमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए, अगर वो इन्वेस्टेड है तो रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहिए।

0: ना कि ऐसे पैनिक में आके अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉ करें, क्योंकि मार्केट्स देखा गया है, जो ट्रेंड है मार्केट्स, अगर गिरावट आती है तो बहुत शार्पली रिकवर करती है।
1: So how should Indian policy makers and investors hedge against a geopolitical oil spike?
0: आई बिलीव दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी इन दी क्रूड ऑयल प्राइसेस। द प्राइसेज आर प्रिवेलिंग इन दी ट्रैजेक्टरी ऑफ 50, मोर देन 50-60%, लाइक $55 पर बैरल टू मोर देन $100 पर बैरल। सो देर आर मेजर करेक्शंस ऑल्सो, क्रूड डिसलीरेट्स समटाइम्स टू द लेवल ऑफ 70, समवेयर 70-75। सो वी हैव अपॉर्चुनिटी, व्हेन देयर इज अ ग्रेट करेक्शन इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, देन वी शुड बिल्ड अवर इन्वेंटरीज, बिल्ड अवर स्टॉक्स, सो दैट द फ्यूचर ट्रैजेक्टरी रिमेन्स स्ट्रांग एंड वी आर नॉट वरीड अबाउट दी डेज दैट वी हैव नाउ, 50 days और 60 days। वी शुड बी ऑपरेटिंग ऑन मोर देन 100 days एज
1: Okay.
0: लाइक मैनी अदर कंट्रीज।
1: Global crude oil prices declined over 3% today. Brent crude was trading 3.4% down at $89 and 1 cent per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.6% lower at $81, 94 cents per barrel when reports last came in. Aspi, why has the oil fallen despite fresh U.S. sanctions on Iran?
0: Because when there are sanctions, the demand trajectory or the business activity will be impacted. So, anticipating the lesser demand for the fuel. So that's why when there is some negativity at the global level, then the speculation or spikes also not work that much strongly. So that is the, I believe,
1: So if
0: reason
1: the
0: for this.
1: price remains at this level that we are talking about, how does that change your outlook for India's inflation,
0: My
1: current account and GDP
0: outlook
1: growth?
0: for India's inflation will remain stable. Inflation will remain within the RBI band. Though crude prices may prevail somewhere between $90 to $100, but still we have our supply chain very strong, and there will not be any impact on the inflation trajectory, and growth is already resilient, and our fundamentals are very strong to support the growth trajectory.
2: ओके श्रोताओं, सराफा बाजार में सोना आज मामूली गिरावट के साथ 1,62,041 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1.4% गिरकर 2,41,848 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एसपी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: जी
2: बहुत बहुत
0: शुक्रिया,
2: धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर शर्मा। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, Benchmark domestic indices rise, Sensex jumps nearly 300 points, Nifty settles above 24,300. Prime Minister Narendra Modi hails UPI as a major turning point in India's digital payments journey, says it is a source of pride for every Indian. And global crude oil prices decline around 3%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
2: Namaste.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समय है गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम का, जिसमें हम सुनवाते हैं आपको सुनहरे दौर के सदाबहार गीत, वो भी बिना रुके। तो चलिए शुरू करते हैं।

0: आपके साथ मैं हूँ तारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और

0: ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकट, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। भारत ने कल भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पेचिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ, साथ ही सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों के जरिए सीमा व्यापार सहित लोगों के बीच बढ़ते संपर्क पर संतोष व्यक्त किया। इससे पहले 2 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने H1N1 इन्फ्लुएंजा, डेंगू और मलेरिया की स्थिति को लेकर अंतरविभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बीमारी की स्थिति, निगरानी, अस्पतालों की तैयारियों, दवाओं और जांच सुविधाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने MCD, NDMC और दिल्ली छावनी को स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास एंटी लार्वा अभियान छिड़काव और छिड़काव तेज करने के निर्देश दिए। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned a global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on 25th of August 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to countries' private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi, Mr. Shah said, strong internal security is essential to achieving Prime Minister Narendra Modi's vision of a Viksit Bharat by 2047. He said, if previous governments had addressed narcotics, nationalism and challenges in the Northeast before they became major crisis, the country could have avoided decades of suffering. He said the government has now eliminated these 3 major internal security challenges and credited state police forces, central agencies and CAPFs for the achievement. India highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके साथ सुरभि और मैं लेकर हाजिर हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी आंखों से गुजर कर दिलो जा में आना, मेरी आंखों से गुजर कर दिलो जा में आना, जिस्म में ढल के मेरी रूह रवा में आना। इश्क ने देख लिए हुस्न में आफाक तमाम, इश्क ने देख लिए हुस्न में आफाक तमाम, एक सकते का वो उम्रे गुजरा में आना, मेरी आंखों से गुजर कर दिलो जा में आना, जिस्म में ढल के मेरी रूहे रवा में आना।

इस साथ। जी हाँ, जब कभी इस खूबसूरत रात में आसमां से चांद चमकता है तो शायद उसे भी अपनी मोहब्बत पर नाज होता होगा। चांद की रोशनी, ठंडी हवाओं का एहसास और ऐसे में किसी की याद, इन सब के बीच रात और भी हसीन हो जाती है। कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ किसी के साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि कई बार दूर रहकर भी आप उसे अपने करीब महसूस करते हैं, ये भी मोहब्बत ही है। तो अगर आज की रात आपके दिल में भी किसी की याद दस्तक दे रही है तो उस याद को छुपाइए मत। कुछ पल आंखें बंद कीजिए और उस चेहरे को, उस मुस्कुराहट को याद कीजिए जो आपकी पूरी दुनिया को खूबसूरती से भर देती है। और चलिए, ऐसे में हम सुनवाते हैं आपको एक गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में। फिल्म है धरती।

आसमान कही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ, कुछ लोग हमारे सामने होकर भी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों का ठहरना उनकी बहुत सारे दिल की बातें बयां कर जाती हैं। उनकी मुस्कुराहट या फिर अचानक से आई कोई याद हमारे दिल को खुश कर जाती है, और उस वक्त वो छोटे छोटे इशारे याद आते हैं जिससे मोहब्बत अपना पता छोड़ जाती है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक इशारा ही काफ़ी होता है, और जिसे समझना होता है वो इशारे से भी समझ जाता है, खामोशी से भी समझ लेता है। तो चलिए, जब बात इशारों की हो रही है तो इशारों ही इशारों में सुन लेते हैं रफ़ी साहब और आशा भोसले को कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत में।

रात के खामोश पहर में जब शहर की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तब कुछ यादें और साफ सुनाई देने लगती हैं। कभी किसी खास शख्स की मुस्कुराहट यूं ही ख्यालों में आ जाती है, बिना दस्तक बिना वजह। शायद एहसास लफ्जों के मोहताज नहीं होते, बस एक सुकून दे जाते हैं। तो चलिए अपनी आंखों को जरा बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए उस खामोशी को, उस याद को, उस मुस्कुराहट को जिसमें किसी की मौजूदगी शामिल होती है। और अब उसी एहसास को थाम कर रखिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए कैसा है गीत जिसे सुनकर आपके लबों पर मुस्कुराहट आ जाएगी।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाश

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। हर रात का एक मिजाज होता है, दिन की भागती दौड़ती जिंदगी में जिन बातों के लिए वक्त नहीं मिलता, वही बातें रात की खामोशी में न जाने क्यों याद आने लगती हैं। कोई पुराना चेहरा, एक अधूरी सी मुलाकात, या फिर किसी की कही हुई वो छोटी छोटी बातें जो बरसों बाद भी दिल में कहीं ठहरी होती हैं, छुपी होती हैं। और जब हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत या गाने, तब वो पुराने खूबसूरत एहसास अचानक उभर आते हैं। शायद ये धुन हमें या आपको एक ऐसे ही शख्स की याद दिला देती है जिसे याद करने के लिए वैसे तो किसी वजह की ज़रूरत हमें पड़ती ही नहीं है।

जब कोई पुरानी याद चुपके से पास आकर बैठती है और शहर की आवाजें धीरे पड़ जाती हैं और रात का सुकून भरा पहर होता है, ऐसे में दिल की बातें कुछ ज्यादा याद नहीं आने लगती। कभी सोच कर देखिए आप, कभी अकेले बैठ कर देखिए आप, तब आपको कोई चेहरा, कोई मुलाकात या किसी के आवाज, किसी की स्वर आपको जरूर सुनाई देंगे। और उस वक्त हम मुस्कुरा कर सोचते हैं कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते बल्कि खामोश हो जाते हैं। कैसी खूबसूरत थोड़ी सी अधूरी सी कहानी के नाम, चलिए सुनते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने कार्यक्रम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: आज दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुँच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा सहयोग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों

की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये इस मुद्दे पर छठी बैठक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया या निष्क्रिय कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। मैंने कब चाहा कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं, मैंने कब चाहा कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं, ये भी क्या कम है कि उसको गवारा हो जाऊं। मुझको ऊंचाई से गिरना भी है मंजूर अगर, मुझको ऊंचाई से गिरना भी है मंजूर अगर, उसकी पलकों से जो टूटे वो सितारा हो जाऊं। मैंने कब चाहा कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं, ये भी क्या कम है अगर उसको गवारा हो जाऊं।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं कि रात जितनी खामोश होती जाती है, दिल उतनी ही साफ तरीके से और साफ आवाज में पुरानी बातें सुनने लगता है। एक चेहरा याद आने लगता है, किसी की बातें, किसी की हंसी कानों में उतर आती हैं। शायद खूबसूरती है यादों की ये सब। वो आती हैं तो कोई दस्तक नहीं होती, बल्कि बहुत ही खामोशी से चुपचाप पास बैठ जाती हैं, जैसे बरामदे में रखी कुर्सी पर आकर कोई अपना बैठ गया हो और हम बिना कुछ कहे बस उसके साथ उस बीते हुए वक्त को महसूस करने लगते हैं। और मोहब्बत भी शायद ऐसी ही चीज़ है, क्योंकि हमेशा इजहार की ज़रूरत नहीं होती। कभी किसी की खामोशी में उसका ख्याल मिल जाता है और कभी किसी रास्ते से गुजरते हुए अचानक ही उसकी याद आ जाती है, और कभी रात के सन्नाटे में दिल बस इतना चाहता है, इतना ही कहता है कि काश काश वो इस वक्त यहाँ मौजूद होता या मौजूद होती। तो अगर

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और चलिए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमालय की गोद फिल्म से ये गीत। जिसे आवाज दी है मुकेश साहब ने।

जैसे कभी कभी मौसम बदलते हैं, ठीक वैसे ही रिश्तों में भी ना ये मौसम बदलता है। बात वही रहती है, इंसान वही होते हैं, लेकिन लहजे में थोड़ी सी दूरी आ जाती है। कोई अपना रूट जाए तो घर वही रहता है, शाम वही रहती है, लेकिन न जाने क्यों सब कुछ अधूरा सा लगता है। और ऐसे वक्त में मन यही सोचता रहता है कि आखिर नाराज़गी किस बात की है, और वो छोटी सी मुस्कान फिर कब लौटेगी। शायद मोहब्बत की खूबसूरती भी यही है कि रूठने में भी एक अपनापन छुपा होता है। तो चलिए ऐसा ही एक नगमा आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर मन की जो खटास है वो दूर हो सकती है, फासला थोड़ा कम हो जाना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत सी धुन है, बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, फिल्म है शागिर्द, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं ये गीत, वो है ज़रा खफा खफा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने, और चलिए गीतों की इस बहुत ही खूबसूरत सी महफिल में अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है किस्मत, और गीत को आवाज़ दी है आशा भोसले और शमशाद बेगम ने।

कुछ गीत अपने संगीत की वजह से याद नहीं रहते, बल्कि वो अपने साथ एक पूरा समय लेकर चलते हैं। और कुछ गीत उस दौर की सहजता, रिश्तों की गर्माहट, प्रेम की मासूम शरारतों को भी लेकर चलते हैं। कुछ गीतों में लोक संगीत की मिट्टी की खुशबू भी शामिल होती है, जिसे हम जब भी सुनते हैं वो हमें हमेशा एक नया ही लगता है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात होगी एक बार फिर 2:10 पर रात सुरमई प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्री स्टेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है रात सुरमई। खराब दर्द हुए गम परिस्थिति में रहे, खुशी की खोज बहाना थी मस्तियों में रहे। हर एक से झुक के मिले यूं कि सरफराज हुए, अजब मजाक से हम घर की गृहस्थियों में रहे। खुशी की खोज बहाना था मस्तियों में रहे।

जब हम कोई गीत सुनते हैं तब हमारे मन में गीत और संगीत के साथ साथ कुछ भावनाएं भी साफ सुनाई देने लगती हैं, और इंतज़ार उन्हीं एहसासों में से एक है जहां वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है लेकिन ये मन किसी एक पल पर रुक जाता है, ठहर जाता है। किसी खास कयामत की उम्मीद, उसकी आहट का ख्याल और इस भरोसे का बना रहना कि दूरी चाहे जितनी हो, मुलाकात कभी न कभी ज़रूर होगी। तो इंतज़ार और मोहब्बत की उम्मीद को बड़ी ही खूबसूरती से पिरोता है हमारा अगला गीत। जी हाँ, चलिए आपको सुनवाते हैं यलगार फिल्म का ये गीत, उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ में।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कुछ रिश्तों की अहमियत उनकी मौजूदगी में कम और उनकी कमी में ज्यादा महसूस होती है। कोई अपना पास ना हो तो जिंदगी रुकती नहीं है, बल्कि जिंदगी के मायने थोड़े से बदल जाते हैं। वही दिन, वही रातें, वही शाम, वही रास्ते, लेकिन पता नहीं क्यों ये मन उसी व्यक्ति को, उसी इंसान को ढूंढता रहता है। शायद मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप यही है कि जब वो दूर हो जाता है, फिर भी उसका ख्याल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साथ चलता रहता है। और ऐसे में कोई धुन अगर कानों में पड़ जाए तो उसकी याद आ जाती है, या फिर कोई जगह देखते ही उसका जिक्र मन में उतर आता है। इसी खामोशी, इसी कमी और गहरे लगाव को पेश करता है ये गीत।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें। पूरे होंगे अपने अरमां किस तरह, पूरे होंगे अपने अरमां किस तरह, शौक बेहद वक्त है कम क्या करें। बख्श दें प्यार की गुस्ताखियां, बख्श दें प्यार की गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं हम क्या करें। दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें। बख्श दे प्यार की गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं हम क्या करें।

अपने दिल को भी बताऊं न ठिकाना तेरा, सबने जाना जो पता एक ने जाना तेरा। ये समझकर तुझे ए मौत लगा रखा है, काम आता है बुरे वक्त में आना तेरा। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुँच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये इस मुद्दे पर 6वीं बैठक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी नौसेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या निष्क्रिय कर दिया है। श्री ट्रंप ने

0: बस प्यार रहेगा।
1: और इसी गीत के साथ रात सुरभि का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए।

रात की खामोशी में एक सदा आती है, हर एक याद बीते वक्त की हवा लाती है। कुछ वादे जो गए थे राहों में कहीं, आज फिर ये शब उन्हें दोहराने आती है। जी हाँ, रात का ये सुकून और इसी गहरी खामोशी में उभर कर आती है वो बातें, वो वादे जो हमने कभी किसी से किए थे, या हमसे किसी ने किए थे, या फिर हमने खुद से किए थे। कुछ वादे जो उम्र भर निभाए गए और कुछ जो वक्त के साथ अधूरे रह गए। तो आइए इस प्यारे से वादों और यादों की दुनिया में रूबरू होते हैं हम और आप हमराही कार्यक्रम में, जिसमें अनमोल वादों की यादों का खजाना गीतों की जुबानी आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इस सफर पर आपके साथ रहूंगी मैं, आप ही के दोस्त, आप ही के हम सफर, रूपा धवन। नमस्कार। तो तैयार हैं आप इस वादे के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे जब तक हम रहेंगे? इसी वादे के साथ हम भी आपके साथ हैं और सुनवाएंगे आपको बेहद ही खूबसूरत से गीत वादे शब्द पर। तो जुड़े रहिए इसी तरह और सुनते रहिए बहुत ही मधुर मधुर तराने हमराही के सफर पर।

साथियों, दिन की रोशनी में हमारा दिमाग बस सिर्फ चारों ओर के शोर में और जिम्मेदारियों में उलझा रहता है, पर रात जब गहराती है तब कमरे की खामोशी एक आईने की तरह काम करती है। उस आईने में बहुत सारी बातों और वादों की तस्वीर अचानक से उतर आती है और हम उन्हीं ख्यालों में खो जाते हैं जिसमें वादों का और बातों का सिलसिला होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम हमराही।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 3:29 और 7 सेकंड। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ हमराही कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वादों से रचे गए गीत। और जनाब, वादे कुछ ऐसे

0: होते हैं जिसमें कुछ इस तरह की भावनाएं होती हैं। ना चांद की चाहत, ना तारों की फरमाइश, तेरे चेहरे पर मुस्कान रहे, बस इतनी सी है ख्वाहिश। जिंदगी के हर मोड़ पर तेरे साथ खड़ा रहूं, आज इस दिल की भी बस यही है आखिरी गुजारिश।
1: वादा?
2: हाँ वादा।

एक वादा हवाओं से किया था, एक वादा हवाओं से किया था कि तुम जब भी आओगी उसकी खुशबू लाओगी। एक वादा रातों से किया था कि तुम जब भी आओगी गहराओगी उसके दिए ख्वाब लाओगी। वक्त बीत गया, मौसम बदल गया, कुछ इंसान दूर हुए, कुछ रास्ते बदल गए, पर इस शब की खामोशी में आज भी वही वादे पुराने मेरे साथ नए बनकर ढल गए।

साथियों, अक्सर रात को कोई पुरानी किताब सिराहने रखी या तकिया, खिड़की से आती ठंडी हवा या सिर्फ आपकी बंद आंखें ही चाबी बन जाती है। इसी वक्त वो पुराने वादे सामने आकर खड़े हो जाते हैं।

कभी कभी मोहब्बत में इंतज़ार, निसार, दोस्ती, वफादारी जैसे भावों और जज्बातों को निभाने के बाद भी हमें धोखा ही मिलता है। सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसमें धोखे का एहसास भी है और वादे का एहसास भी है। इस एहसास को अपने स्वरों से पिरोया है किशोर कुमार साहब ने। फिल्म है दुश्मन और गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

वादा सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से भी निभाए जाने वाला एहसास होता है। सबसे प्यारा वादा वो है जो बिना कहे आंखों से निभाया जाता है। कारवां फिल्म का ये गीत आप सभी सुन रहे हैं रफ़ी साहब और लता जी के स्वर में।

रात के वादों से ये मुलाकात असल में हमें ये एहसास कराती है कि वक्त कितना भी बदल जाए, हमारी नीयत और जज्बात आज भी जिंदा हैं।

रात के वादों से ये मुलाकात असल में हमें ये एहसास कराती है कि वक्त कितना भी बदल जाए, हमारी नीयत और जज्बात आज भी जिंदा हैं।

रात ढल रही है पर यादों का चिराग जलता रहेगा, वादा रहा फिर मिलेंगे ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ फिलहाल रूपा विदा लेती है। 4:10 पर फिर से आपके साथ रहूंगी अरुणिमा कार्यक्रम में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिवसीय दौरे पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भारत के महावाणिज्य दूत महावीर सिंघवी ने उनका स्वागत किया। इस दौरे के दौरान वह कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इस वार्ता में दोनों देश आर्थिक स्थिति, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, निवेश और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री अमेरिका के लिए रवाना होंगी, जहां वह G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह इस मुद्दे पर 6वीं बैठक थी। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका भी भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आपका अपना साथी, अपना दोस्त सदाबहार, आपका चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां रात का गहराया अंधेरा धीरे धीरे हटकर उजले सूरज की किरणों को अपनी आगोश में पनाह देने की तैयारी कर रहा है। और ये वक्त है अरुणिमा का, 4:11 और 38 सेकंड। अरुणिमा में आपके साथ रहूंगी मैं, आप ही की हम सफर, आप ही की अपनी, आप ही की अपनी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार।

आपने देखा ही होगा, जो पौधे पानी और धूप पाते हैं वही फूल खिलते हैं। ठीक वैसे ही इंसान भी वही व्यवहार दोहराता है। जिसे सराहा जाता है वो खूब तरक्की पाता है, मन की शांति पाता है और हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करता है। आशाओं और निराशाओं के दामन से लिपटा हुआ आदमी, उसकी ज़िंदगी में जब निराशाएं आती हैं तो वो हताश नहीं होता, बल्कि अपनों का साथ पाकर हमेशा आशा का दामन थामता है और थामकर हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी के रास्तों पर चलता है।

किसी को भी गलतियां गिनाना आसान होता है, पर किसी के छोटे प्रयास को पहचान कर उसे आगे बढ़ाना ही असली समझदारी है।

साथियों, सफलता पाने के लिए जब हम सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, तब नतीजे का इंतजार न करके अपनी तरफ से हम बार बार सफलता पाने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें हम सफल भी हो जाते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। और जब सफलता हमें मिल जाती है तो ये खुशियों को दोगुना कर देती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन।

के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 4:36 और 7 सेकंड। आप हैं अरुणिमा कार्यक्रम में अपने दोस्त रूपा के साथ और हम बातें कर रहे हैं सकारात्मक विचारों की। कभी कभी हमें गिराने वाले इंसान वरदान बन जाते हैं जो हमें और भी मजबूत और समझदार बना देते हैं। और जिंदगी में ऐसे दोस्तों का होना भी जरूरी है। दोस्त क्यों ना कहें उन्हें, जो हमारे जीवन में मजबूती देते हैं, हमें एक तरह का सहारा देते हैं समझदार बनने का। तो वास्तव में तो हमारे लिए वही दोस्त हुए ना। तो ऐसे दोस्त भी जिंदगी में होने चाहिए।

दोस्त हमें हमारी खूबियां बताते हैं ताकि हमारा हौसला बढ़े, और कुछ लोग हमारी कमियां ढूंढते हैं। पर ये कमियां भी ढूंढने हैं जब, तो इन कमियों पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम अपने आप में बेमिसाल बन जाते हैं। तो कमियों से घबराएं ना, बल्कि उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें ताकि आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें।

जी हाँ, जीने की राह तो हमें सच्चे दोस्त ही बता पाते हैं, या फिर हमारे आदर्श हमें जीने की राह देते हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। खुद पर विश्वास हमारे मन को मजबूत बनाता है, जो हमारे विचारों को और भी ज्यादा समृद्ध करता है। वक्त हुआ है इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:44 और लीजिए हो गए 45 और 3 सेकेंड। आप है रूपा के साथ अरुणिमा के सफर पर।

किसी के द्वारा झूठे सपनों में ना जीकर खुद पर यकीन करके जब हम जिंदगी की नाव पर सवार होते हैं, तब वो यकीन हमारे सपनों को संवार कर हकीकत में बदल देता है। वो हकीकत जिसे पाने की जद्दोजहद में हमने ना जाने कभी कितने त्याग और समर्पण किए थे।

कुछ लोग हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह से खुशियों के बौछारे लाते हैं कि कभी अपनी बातों से, कभी भावनात्मक रूप से जुड़कर हमें एक नई ऊर्जा में बदल देते हैं। यहाँ तक कि हमारे जीने का नजरिया ही बदल जाता है जब हम उनके साथ रहते हैं। वाकई इन खास रिश्तों की अपनी ही एक खास जगह है और ये खास जगह हमें बनाती है उनके साथ, जिन्हें हम अक्सर रिश्तों में ढूंढते हैं जो हमारे बहुत ही खास हैं।

5:10 पर भोर सुहानी कार्यक्रम होगा जिसमें आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। फिलहाल अरुणिमा से अनुमति दीजिए, रूपा धवन को नमस्कार। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत की डिजिटल

0: भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है।
1: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में कल उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैंपेन के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका रवाना होंगी। भारत ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया है। पेचिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हुआ, साथ ही सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल कार्य मंत्री की संसदीय समिति ने बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से विकसित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका भारत से अभी 238 रन पीछे है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Sevatirth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors, spanning 9 states with a cumulative cost

लीजिए जनाब, खुशियों की भोर आ गई है। धीरे धीरे मंजिलों के रास्तों से होते हुए आपके घरों तक सूर्य की किरणें आ रही हैं आपको जगाने के लिए। समय हुआ है 5:11 और 19 सेकंड। आप हैं भोर सुहानी में अपने दोस्त रूपा के साथ। नमस्कार, सुप्रभात।

ठंडी हवा का ये झोंका एक मीठा सा संदेश लाया है। उठो, जागो और पहचानो, तुम्हारा नया सवेरा आया है। आसमान का ये सुनहरा रंग गवाही देता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी का ही साया आया है।

घड़ी की सुइयां जल्दी जल्दी दस्तक दे रही हैं और बता रही हैं 5:23 हो चुके हैं 12 सेकंड। आप हैं भोर सुहानी में मेरे साथ, यानी अपने ही दोस्त रूपा के साथ, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तो दोस्तों, भोर का समय आपसे कह रहा है, बीती बातों को भूल जाइए। जी हाँ, बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि वो इतिहास बन चुकी हैं, वो सिर्फ यादों के रूप में रह चुकी हैं। आज के दिन को सुखद पल बनाने के प्रयास में जुट जाइए जनाब, और जल्दी से उठिए, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। क्योंकि क्या पता आज आपने किसी से मुलाकात करनी हो, कोई ख़ास हो आपके लिए। तो जनाब, भोर सुहानी की पहली प्रहर को ज़रूर जिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।